सुप्रभात जी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, इसके साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही समय में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी

0: भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन। आज के चिंतन का विषय रहेगा स्वतंत्रता दिवस।

श्रोताओं नमस्कार। 15 अगस्त हमारी स्वाधीनता का दिन। 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजी दासता से मुक्त हुआ। लगभग 250 वर्षों की गुलामी के बाद आज के दिन हमारी आज़ादी का सूर्योदय हुआ और हर तरफ स्वाधीनता की रोशनी फैल गई। हम भारत के लोग इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर अनेक तरह के सितम ढाए और हमारी आज़ादी की मांग को लगातार कुचलते रहे। देश को आज़ादी लेने के लिए संघर्षों का लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अनेक आंदोलन चलाए गए, लाखों लोगों ने स्वाधीनता के इस हवन में अपनी आहुतियां दी और अंततः विभाजन की त्रासदी के साथ देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद देश ने लोकतांत्रिक मार्ग पर चलते हुए विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाए और अनेक प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए आज हमारा देश संसार के विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा है। स्वतंत्र होने के बाद देश को शरणार्थी समस्या से जूझना पड़ा और पड़ोसी देशों की कुटिल चाल

0: का सामना करते हुए देश आहिस्ता आहिस्ता विकास के पथ पर बढ़ता गया। बड़े बांधों का निर्माण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति जैसी आम जन की जरूरतें पूरी करने वाली योजनाएं रहीं, वहीं भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में भी बड़ी छलांग लगाई और स्वयं के बनाए हुए उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए। छोटे बड़े उद्योग धंधों का लगना और परिवहन की सुविधा देश की बढ़ती हुई आबादी की मांग को पूरा करने में सफल रही। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे विकास की नई तस्वीर पूरी दुनिया आश्चर्य से देखती है, लेकिन इसके पीछे भारत की जनता और यहाँ की सरकारों की स्पष्ट दूरदृष्टि रही। धीरे धीरे चलकर ही आज हमने चमचमाते राजमार्ग बनाए, रेल परिवहन को सुदृढ़ बनाया और हमारी लगनशीलता व मेहनत से आज हमें समृद्ध और स्वाभिमान राष्ट्र के निवासी होने का गर्व है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भी अहम है। आज का ये दिन हमें सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को याद करने का भी दिन है। स्वतंत्र होने के साथ ही हमारी कुछ नागरिक जिम्मेदारियां भी है जिन्हें हमें निभाना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान में हम अपनी सक्रिय साझेदारी निभाएं। देश के कानूनों का पालन करते हुए हम ईमानदार भारतीय बने रहें। इस शुभ अवसर पर देश के सभी सैनिकों का भी अभिनंदन है और स्वाधीनता हमारे लिए अक्षुण रहे, यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और मन में भक्ति के भावों के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो मन को एक अलग ही शांति मिलती है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। भक्ति और आस्था से मन को जोड़ने वाले इस सुंदर क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय है श्री राम के चरित्र और आदर्शों का स्मरण करने का। लीजिए प्रस्तुत है अद्भुत और पूजनीय श्री रामचरितमानस गान। आज आप इसमें सुनेंगे कड़ी संख्या 151। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

वन गमन के लिए श्रीराम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधू की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्रीराम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, कड़ी संख्या थी 151। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमेर चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामे चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा। श्रोताओं, कार्यक्रम रूपरेखा में प्रस्तुत है जानकारी हमारे आज के प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों और उनके प्रसारित अनुप्रसारित समय के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर करसारी बात में वार्ता सुनेंगे मिनी ट्रैक्टर की कृषि के उपयोगिता के संदर्भ में। सवेरे 7 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडारोहण समारोह एवं माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम उद्बोधन का सजीव प्रसारण। फिल्म संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:15 पर। सवेरे 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। सवेरे 9:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इसमें आप सुनेंगे किंशुक सी श्रीवास्तव द्वारा ख्याल गायन वैराग तोड़ी। सवेरे 10 आप सुनेंगे हेलो जयपुर में हमारा विमेन अचीवर्स सेगमेंट। 11 हेलो जयपुर में आप सुनेंगे आपकी पसंद के फरमाइशी फिल्मी तराने। 12:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। कलाकार होंगे लखन लाल शर्मा। नारी को समर्पित आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम महिला जगत आप सुनेंगे दिन में 1:30 पर। इसमें आप सुनेंगे चर्चा स्वतंत्रता दिवस पर, साथ ही सुनेंगे वार्ता भारत का स्वतंत्रता दिवस संग्राम विषय पर प्रोफेसर गिरिजा जोशी से। राजस्थानी लोक संगीत की मनमोहक प्रस्तुति आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कलाकार होंगी ऋतु माथुर। दिन में 3:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 4 का समय रहेगा कार्यक्रम आपके साथ का, जिसमें होगा लाइव फोन इन। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे 5:00। शाम 5:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम साहित्य धारा, जिसमें आप सुनेंगे कविता पाठ अनिल कुमार शर्मा द्वारा। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा शाम 6:43 का। शाम 7 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम खेती बाड़ी का, जिसमें बातचीत होगी खरीफ फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता के विषय पर डॉक्टर शालिनी शर्मा से। साथ ही सुनेंगे लोक संगीत, जानेंगे बाजारी भाव व मौसम संबंधित जानकारी। रात्रि 8 आप सुनेंगे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष समाचार तरंग से। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी जानकारी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामी चैनल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कर सारी बात, जिसमें वार्ता सुनेंगे मिनी ट्रैक्टर की कृषि के उपयोगिता के संदर्भ में।
4: करसा बायर बना, राम राम करसा बायर बना। आज कर सारी बात कार्यक्रम में आप बात कराला कृषि में मिनी ट्रैक्टर की उपयोगिता। आप देखा कि छोटा सा ट्रैक्टर है, कई बार लोगों के लिए कोतवाल भी बन जावे, जो नया बच्चा है शहरा में रहे और गाँव में जावे तो अचानक सू देखे छोटा ट्रैक्टर, तो इको खेती के मायने उपयोगिता बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं है वो आप आज बात करा। खेती, मिट्टी की जुताई, पशुधन पालन, फसल उगाबो और कई तरह का काम जो है वो खेती के मायने आपा ग्रामीण भाई करे है, और हाथासू और पशुआ सू खेती करबो अब आसान काम को नहीं, इसलिए ट्रैक्टर है वो किसाना की सुविधा के लिए तेजी से काम करबा के लिए, फसल को उत्पादन बढ़ावा के लिए बनायो गयो है। आजादी के बाद से भारत के मायने ट्रैक्टर एक प्रमुख उद्योग है, इमु खेती का उत्पादन है वो लाभ में महत्वपूर्ण योगदान रखे। आजादी के बाद से ही खेतीबाड़ी के मायने जी तरह से लगातार बदलाव देखबा में आया है, और खास करके ट्रैक्टर जो है वो खेती के मायने क्रांति को काम करियो। जो हाथासू जो पशुआ सू काम करता है वो ट्रैक्टर आबासू बहुत आसानी सू काम होगो, लेकिन हर किसान के पास में बजट के हिसाब से ट्रैक्टर संभव नहीं है, तो मिनी ट्रैक्टर है बिकी उपयोगिता भी बित्ती ही है। बस आ बात है कि छोटा किसान के लिए, कम जमीन वाला किसान के लिए वो मिनी ट्रैक्टर है बहुत ही फायदेमंद है, और इकी लाभ इकी चीज़ें हैं इके बारे में बातचीत करा। सबसे पहले तो किफायती है कि भारत में किसान के लिए मिनी ट्रैक्टर की जो कीमता है वह कम है। अपा सब जाना कि ट्रैक्टर चुनता समय किसान है वो आपरो बजट है के हिसाब से ट्रैक्टर चुनिया करे। मिनी हाईटेक फोर व्हील ड्राइव भी उपलब्ध है और अबार किफायती भी है। ईंधन की बचत है वो सबों बड़ो एक कारण है खेती के लिए। छोटा ट्रैक्टर विशेष रूप से ईंधन कुशल होवे और बड़ा ट्रैक्टर जितो ईंधन कौन खावे। मिनी ट्रैक्टर की टैंक क्षमता छोटी जरूर है वे, पर बड़ा ट्रैक्टर की तरह लंबा समय तक काम कौन कर सके, पर छोटा खेता के लिए बढ़िया है, जटे टैंक ने आसानी से भरियो जा सके। खेता के लिए मिनी ट्रैक्टर कम ईंधन उपयोग करें और जिससे किसान का पैसा भी बच जावे और खेती को काम जो है वो सफलतापूर्वक करियो जा सके। चूंकि मिनी ट्रैक्टर ड्राइवरा के लिए एक आरामदायक जगह प्रदान करे, इसलिए किसान खेती के काम करता सब सहज सवारी को आनंद ले सके। मिनी ट्रैक्टर को उपयोग कई तरह का कार्य के लिए करियो जा सके, क्योंकि आपका देश का किसान जो है वह खेती के साथ साथ कृषि उपकरण मशीनरों को जो काम है वो भी करे है, और बाकी अधिकतम क्षमता को पतो भी लगायो जा सके। मिनी ट्रैक्टर से जुताई, बुआई, निराई, छिड़काव, कटाई, ढुलाई, जमीन समतलीकरणों, थ्रेसर, चारों काटबा की मशीन, बिजली का कई उत्पादन और पानी पंपिंग समेत कई स्थिर संचालन ने लेर कई तरह का काम है वे करबा के मायने ट्रैक्टर है वो सक्षम है। छोटा ट्रैक्टर की बात करा तो न्यूनतम स्थान जो है वो सबों में बड़ी चीज़ है, कि कई बार आप देखा कि छोटा खेता के लिए जटे जगह कम है ट्रैक्टर ने सुरक्षित स्थान पर रखबो मुश्किल है, आवाजाही में दिक्कत है, अँ मिनी ट्रैक्टर आसानी से एक छोटी सी जगह में फिट हो जावे। इके लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत कौन पड़े, ये लिहाज से भी मिनी ट्रैक्टर है वो किसाना के लिए फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। मिनी ट्रैक्टर को व्हीललेस छोटो वे जिस वे संकरी जगह पे छोटा टर्न

0: में काम कर सके। मोड़वा की पोजीशन के मामला में भी बड़ा ट्रैक्टर की अगर तुलना करा तो छोटा ट्रैक्टर है, मिनी ट्रैक्टर में फायदेमंद है और किसान ऐसा काम खोज सके जो आसानी सु कुशलता सु पूरा कर सके। सुचारू खेती करबा के लिए भी मिनी ट्रैक्टर है वो उपकरण सु काम आ सके है। खेती कार्य के लिए सहायक उपकरण की उपलब्धता के बाद ही मिनी ट्रैक्टर को उपयोग बढ़ियो। जो आप अगर बात करा तो भूमि की तैयारी, हड़ासू, रिवर्सिबल हल, डिस्क हल, रीजर, रोटावेटर, छेनी हल, डिस्क हल, लेवलर। बुआई की बात करा तो बीज से उर्वरक ड्रिल, जीरो टिलेज सीड ड्रिल, आलू बोबा की मशीन। फसल की देखभाल की बात करा तो उर्वरक ब्रॉडकास्ट स्प्रेयर, एरो ब्रास्टर स्प्रेयर, जितना भी मशीनरी है वे ट्रैक्टर के साथ लगा करके मिनी ट्रैक्टर के साथ भी काम कर सका। अपना देश के मायने व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध कुछ मिनी ट्रैक्टर को अगर बात करें तो सामान्य विवरण की जो को पावर है वो 1530 हॉर्स पावर है, 103 सिलेंडर को है, 800 सू 1000 किलोग्राम मा को किलोग्राम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 2530 लीटर की होया करे। एवरेज फ्यूल कंजप्शन 153 लीटर प्रति घंटा। लंबाई वहाँ की 250 सू 3 मीटर है, चौड़ाई 90 सू 1 मीटर की हुए, 90 सेंटीमीटर सू 1 मीटर, और चौड़ाई है वो 1.2 सू लेयर 1.7 मीटर के आसपास की ट्रैक्टर की मिनी ट्रैक्टर की होए। तो मोटे तौर पे एक निष्कर्ष पे अगर बात करा तो जब कोई किसान मिनी ट्रैक्टर और बड़ा ट्रैक्टर की दुविधा के चौराहे पे खड़ो है तो याद रखबो चाहिए कि आकार मायनों कौन रखे। मिनी ट्रैक्टर को उपयोग कई तरह का कार्य के लिए करियो जा सके, क्योंकि आपका देश का किसान जो है वह खेती के साथ साथ कृषि उपकरण मशीनरों को जो काम है वो भी करे है, और बाकी अधिकतम क्षमता को पतो भी लगायो जा सके। मिनी ट्रैक्टर सु जुताई, निराई, ढुलाई, जमीन समतलीकरणों, थ्रेसर, चारों काटबा की मशीन, कई स्थिर संचालन ने लेर कई तरह का काम है वे करबा के मायने ट्रैक्टर है वो सक्षम है। कई बार आप देखा कि छोटा खेता के लिए जटे जगह कम है, ट्रैक्टर ने सुरक्षित स्थान पर रखवो मुश्किल है, आवाजावा में दिक्कत है, अहियाँ मिनी ट्रैक्टर आसानी से एक छोटी सी जगह में फिट हो जावे। याद रखा कि एक बड़ो ट्रैक्टर समीकरण के तौर पे देखियो जा सके बड़ो है, पर आपा की खेती में अनूठी जरूरता के लिए उपयुक्तता जितनी है दक्षता और आपकी उत्पादकता में पूरी तरह से प्रभाव अगर मिनी ट्रैक्टर रखे। चाहे किसान मिनी ट्रैक्टर चुने या फिर बड़ो ट्रैक्टर चुने, महत्वपूर्ण बात आ है कि खेत के लिए अशो साथी चुनो जो आधुनिक कुशल और किसान ने समृद्ध बनावे।
1: कर सारी बात कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमी चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज, साथ ही दूरदर्शन के DTH चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं, और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। सवेरे के 6:54 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: प्रसारित है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको लाल किला लिए चलते हैं, जहां से आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: हॉलमार्क का निशान देख कर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी। देश

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चलें।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
3: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं, तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे

0: मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहाँ बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कॉमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहाँ लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल DCP विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस

0: उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहाँ लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफ़ेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज़्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
1: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो 3 प्रधान रंग हैं उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ

0: हैं जो कर सकते हैं देश प्रेम मन में रखे हुए संजोए हुए देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र। मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।

0: संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर। ये विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में हम सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे, तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए। और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला, मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है। और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
2: निश्चित रूप से। और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहाँ घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है, क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर, ये Mi-17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने, उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही
1: जी। और जनेंद्र, किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये
0: जी। और राष्ट्रीय सलामी कार्य अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाई और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहाँ आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहाँ से प्रस्थान करते हुए, और आतुरता से यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ थे, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं।

और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देश

तुच्छों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसी ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल यह हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है। और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है। और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम

5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल

जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना। इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है, वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव

किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग, एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरता मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे

हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्त धारा की दूसरी शक्ति है

कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है, और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति, और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा, और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथ ही साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है, और दुनिया के लिए इसका

अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है। हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से कर और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवन भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो। भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल

नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें काय आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपने को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 2014 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 2014 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करें।

ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे, बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार नौ दस का कालखंड था, सिर्फ 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140,00,000 करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं,

करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में

माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेल कूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी ने

किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ के पास। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का

लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और माननीय
1: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर।

0: और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का, बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का ये एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हो, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूँ, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूँ, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूँ, मैं हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का, नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं, हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
0: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय

0: वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, GST हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जन धन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हम

0: विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्रनाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
1: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
0: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
1: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
0: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

0: नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
2: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
2: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति

0: की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
0: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
0: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
0: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में

0: बढ़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
1: यूरिया के दाम दुनिया में 3,000 रुपए पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3,000 रुपए में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपए में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1,350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छटा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की है। शीर्षक दिया है, तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख्य पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को

0: बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ता ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards, including 13 posthumous for defence and central armed police forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
3: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो इससे बड़ा उत्साह

0: अवसर क्या हो सकता है। पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: Prime Minister said, a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
0: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
0: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
1: He said India, which was once among the fragile five economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
0: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
1: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defence production has increased nearly fourfold.
0: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: Ab energy ke bina bhi nayi duniya ko chalana mushkil hai aur isliye hame cheap ho, AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लांट

0: हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है। और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है, और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of unfair means in public examinations. Addressing the nation on the eve of the Independence Day, she said students are the architects of India's future and government is making the system more transparent, secure and trustworthy for the youth.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: President Draupadi Murmu has approved 78 gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and Central Armed Police Forces on the eve of Independence Day. 13 awards have been given posthumously. These are 9 Kirti Chakras, 1 bar to Shaurya Chakra, 19 Shaurya Chakra, 5 bar to Sena Medals, 36 Sena Medals, 3 Neo Sena Medal and 5 Vayu Sena Medals. A powerful 7.7 magnitude earthquake hit the ocean near Indonesia early in the morning, damaging homes and public buildings while triggering a tsunami warning. There are no immediate reports of casualties. The quake was felt across much of Flores Island. Authorities have issued a tsunami warning for part of East Nusa Tenggara, West

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत आज अपना 80वां यौमे आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान तेजी से तरक्की की है, जिनमें डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचे और समाजी बहबूद के शोबों में पेशरफ्त काबिल जिक्र है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हुकूमत पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम कर रही है। सदर जमहूरिया ने 78 बहादुरी इनामात को मंजूरी दी है, जिनमें दिफाई और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेस अहलकारों के 13 बादज मर्ग इनामात भी शामिल हैं। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से गाले में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज अपना 80वां यौमे आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तारीखी लाल किले से यौमे आज़ादी तकरीबात की क़यादत की। वज़ीर आज़म की लाल किला आमद पर पहली मरतबा वंदे मातरम की धुन बजाई गई। वज़ीर आज़म ने परचम कुशाई की और उसके बाद कौमी तराना गाया गया। परचम

0: कुशाई के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई और भारतीय फजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की पंखुड़ियां निछावर की गईं। इस साल की यौम आज़ादी तकरीबात साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर में यंग इंडिया के तावुन के इतराफ के तौर पर युवा शक्ति को भी तस्लीम करती है। लाल किले की फसील से मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली मरतबा लाल किले की फसील से वंदे मातरम गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सैलाब और चट्टाने खिसकने के वाकयात हुए हैं, जिससे कई कुनबे मुतासर हुए। वज़ीर आज़म ने सभी मुतासरा कुनबों को यकीन दिलाया कि मुल्क उनके साथ मजबूती से खड़ा है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 वर्षों में मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने मुसम्मम इरादे और लगन के साथ मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाने की तमाम मुमकिन कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों के सबब 25 करोड़ अफराद ने गरीबी से निजात हासिल की। उन्होंने कहा कि भारत जो कभी 5 कमजोर मईशतों में शामिल था, आज दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत बन चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एक बड़ा हदफ अपने सामने रखा है और वो है साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है।
0: मुख्तलिफ शोबों में अहम हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल में दिफाई पैदावार में तकरीबन 4 गुना इजाफा हुआ है, जबकि खादी और देही सनत की पैदावार में 5 गुना इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन 7 गुना, जदीद रेलवे कोच की मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना और मोबाइल फोन तैयार करने में 33 गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सारिफिन की तादाद में भी तकरीबन 4 गुना, जबकि डिजिटल माली लेन देन में जबरदस्त 100% इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने आम आदमी की बहबूद और बुनियादी जरूरियात के तई यकसां संजीदगी के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हजारों जाब्ता जाति तामीली तकाजों और सैकड़ों फरसुदा कवानीन को मनसूख करके तर्ज हुक्मरानी में भी गैर मामूली तब्दीलियां की हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया, इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की राह पर गामजन होते हुए कई गैर मुतवक्के बहरानों पर कामयाबी हासिल की है। उन्होंने COVID-19 वबा और यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाजों के बाद पैदा होने वाले चैलेंजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन बहरानों के दौरान टीकों, ईंधन, गैस, डीजल और फर्टिलाइजर्स के बारे में लोगों के दरमियान खौफ फैलाने की खातिर कई तरह की अफवाहें फैलाई गईं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत की मनसूबाबंद पॉलिसियों, तैयारियों और बरवक्त इकदामात से मुल्क ने इन चैलेंजों का बखूबी सामना किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि नागरिक देवोभवा के नज़रिए को सामने रखते हुए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया कि पिछली दहाई के दौरान किए गए इंतजाम बहरान के वक्त में मुअसर साबित हों। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के पास गैस, पेट्रोल और यूरिया की अच्छी सप्लाई मौजूद है और मुल्क अपनी सलाहियतों की ताकत की बुनियाद पर एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म

0: ने कहा कि कई मौकों पर मुल्क वसाइल की कमी की वजह से नहीं बल्कि वो अपनी महदूद सोच की वजह से रुक जाता है। उन्होंने कहा कि आज भारत को खाम तेल पर मुनहसर होना पड़ रहा है और ये भी महदूद सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने साहिली इलाकों के 99% को खोल दिया है जहाँ पहले कोई नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत समंदर की गहराइयों में नए वसाइल तलाश कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा वक्त की अहम ज़रूरत है और हुकूमत ने इस समत कई ठोस इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई मुल्क की तवानाई फराहमी को यकीनी बनाने के लिए एक अहम जरिया है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत 2047 तक न्यूक्लियर बिजली की सलाहियत 100 गीगावाट के हदफ को हासिल करने की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत इस दहाई के दौरान 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का हदफ रखता है।
1: अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से भारत ने तकरीबन 40 मुल्कों के साथ आज़ाद तजारती समझौते किए हैं जिससे भारत के ताजिरों और बरामदकारों के लिए वसी मौके पैदा हुए हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बहुत छोटी और औसत दर्जे की कंपनियों MSMEs से कहा कि वो इन मौके का भरपूर इस्तेमाल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत का सामान पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हर भारतीय मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की लगन के साथ काम कर रहा है।
1: बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
0: अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मुल्क के अवाम से सप्त धारा के नाम से ताकत और कुव्वत की 7 धाराओं पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगले 5 से 7 बरसों में मुल्क वो सब हासिल कर लेगा जो पिछली 5 से 7 दहाइयों में हासिल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की ताकत और सलाहियत के साथ हुकूमत मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाएगी और मुल्क को नए हदफ हासिल करने के काबिल बनाएगी। वज़ीर आज़म ने पहली धारा को मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि सप्त धारा की दूसरी ताकत ज़राअत और ग़िज़ाई पैदावार है, तीसरी टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, चौथी गतिशक्ति, पांचवी दिफाई सलाहियतें, छठी ताकत सब्ज मईशत और समंदरी मईशत है और सप्त धारा की 7वीं धारा भारत का सकाफती विरसा है।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत ने अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI हुनरमंदी की तरबियत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये तरबियत उन नौजवानों को मस्नूई जहानत के आलमी शोबे में क़यादत के काबिल बनाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, कीमत, मेयार और हुनरमंदी पर तवज्जो मरकूज करना होगी।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
0: वज़ीर आज़म

0: के 5 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों की सलाहियतों को पहचानने के लिए गांवों, शहरों और स्कूलों में खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के हुनर की शिनाख्त की जाएगी और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी बनने में मदद करने के लिए खुसूसी तरबियत दी जाएगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आज खेलों की दुनिया में अपना मकाम बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत साल 2030 में दौलत-ए-मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेकाम के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 80वीं यौमे आज़ादी के मौके पर कल शाम कौम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय मईशत की शरह नमू औसत आलमी शरह नमू से दो गुना से भी ज्यादा रहने की तवक्को है।
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम के लिए जामे इकदामात कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यौमे आज़ादी 2026 के मौके पर डिफेंस फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अमले के लिए बहादुरी के 78 अवार्ड्स को मंजूरी दी है। 13 अवार्ड्स बादज़मर्ग दिए जाएंगे। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान दो मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रसवी।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने मुल्क के 80वें यौम आज़ादी के जश्न और सदर जमहूरिया के यौम आज़ादी से कबल कल शाम कौम से खिताब को अपनी छह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब और प्रताप की छह सुर्खी है, सदर जमहूरिया के बयान पर मबनी है, युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी दौलत, सुनहरे मुस्तकबिल का भरोसा।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत आज अपना 80वां यौम आज़ादी मना रहा है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर परचम कुशाई की। वजीर आजम ने मुल्क से खिताब करते हुए साल 2047 तक विकसित भारत बनने के मुल्क के सफर को तेज करने पर मरकूज सात निकाती इस्लाही फ्रेमवर्क सप्त धारा का ऐलान किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 100 गीगावाट न्यूक्लियाई तवानाई पैदा करने और 5 नए रिएक्टर्स कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह अमीर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का देश भर में उल्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश में रिफॉर्म को दृढ़ संकल्प के साथ अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। और प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से रिफॉर्म को दृढ़ संकल्प के साथ अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश

0: में रिफॉर्म की गति को बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने इसके लिए देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता जताई। प्रधानमंत्री ने देश को नई ऊंचाई और गति देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन तथा ब्लू इकोनॉमी और भारत के सॉफ्ट पावर का विकास शामिल है।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भारत ने कई वैश्विक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव के सिद्धांत से प्रेरित सरकार के दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि पिछले दशक में की गई व्यवस्थाएं संकट के समय प्रभावी साबित हों।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
0: प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में देश में सिविल डिफेंस मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके लिए वॉलंटरी फोर्स तैयार की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए प्रतिभाओं की पहचान के वास्ते गांवों के स्कूलों में टैलेंट हब अभियान शुरू किया जाएगा। इधर प्रदेश भर में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का उल्लास है। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और UPI पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
2: हमारी सरकार विकसित राजस्थान 2047 के विजन पर दिन रात काम कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राजस्थान से विशेष लगाव है। उन्होंने बीते समय में राजस्थान के विकास के लिए जो सौगातें दी हैं, वे हमारे प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही हैं।
0: दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर हुए समारोह में विभिन्न मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भीलवाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। शेष जिलों में जिला कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में झंडारोहण किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया। इस बीच स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हर नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। श्रीमती मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
3: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने

0: शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे चित्तौड़गढ़ और अलवर जिलों में 1877 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री शाह निम्बाहेड़ा के अंबेडकर राजकीय कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनका अलवर में किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना के तहत किसानों को DBT जारी करने का कार्यक्रम है। वे 10,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। श्री शाह के प्रस्तावित चित्तौड़गढ़ और अलवर दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने इस संबंध में कल तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित जिला प्रशासन को कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। महिलाओं के इस विशेष पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। इस कड़ी में कल बूढ़ी तीज की सवारी भी निकाली जाएगी। सावन के पवित्र महीने की तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अखंड भाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। रामदेवरा मेले में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 जोड़ी मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। इनमें भगत की कोठी रामदेवरा के बीच 3 जोड़ी तथा श्रीगंगानगर पोकरण के बीच 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन शामिल है। भगत की कोठी रामदेवरा मेला स्पेशल 28 से 25 सितंबर तक चलेगी। जोधपुर रायकाबाग मंडोर मारवाड़ मथानिया तिवरी ओसिया मारवाड़ लोहावट और फलौदी में इस ट्रेन का ठहराव होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का देश भर में उल्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश में रिफॉर्म को दृढ़ संकल्प के साथ अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल चित्तौड़गढ़ और अलवर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामेर चैनल है मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज पर।
2: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
5: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
6: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
5: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
6: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
5: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
7: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
8: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
9: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामी चैनल है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो जयपुर।

नमस्कार खमागणी, हेलो जयपुर। मैं हूं आपकी रेडियो सखी अंबिका तंवर और आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर में हमारा खास सेगमेंट विमेन अचीवर्स। दोस्तों, आज हम आपको चार ऐसी बेटियों की कहानी से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी चुनौती गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज हम सुनेंगे एक कहानी झांसी के किले से निकली, दूसरी अवध की गलियों से, तीसरी बंगाल की धरती से और चौथी असम के एक छोटे से गाँव से। चारों का समय अलग, उनका संघर्ष अलग, लेकिन इन चारों में एक चीज कॉमन थी, अपने देश की आजादी के लिए अटूट साहस। सबसे पहले चलते हैं झांसी की ओर, क्योंकि हमारी पहली अचीवर सिर्फ एक रानी नहीं थी, वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी वीरांगनाओं में से एक थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई की। सन 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और अंग्रेजी हुकूमत के सामने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध की आवाज़ उठने लगी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। कल्पना कीजिए, एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ झांसी की रक्षा का संकल्प लिए एक महिला शासक। उस दौर में जब महिलाओं के लिए समाज की सीमाएँ इतनी अलग थी, एक महिला स्वयं युद्धभूमि में उतरकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्धभूमि में असाधारण साहस दिखाया। घोड़े पर सवार होकर लड़ने वाली उनकी छवि आज भी भारतीय इतिहास और हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की कहानी हमें सिर्फ वीरता नहीं सिखाती, यह हमें बताती है कि लीडरशिप का मतलब मुश्किल समय में आगे खड़े होना भी है। आइए सुनते हैं उन्हें समर्पित ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म लड़की सह्याद्री की से।

श्रोताओं, आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसी आज़ादी की कीमत चुकाने वाली हमारी वीरांगनाओं का योगदान भी उतना ही बड़ा है। 1857 के विद्रोह के दौरान जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पूरे भारत में संघर्ष तेज हुआ, तब अवध में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व संभाला। जी हाँ, हमारी अगली विमेन अचीवर हैं बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिजरिसकद्र को अवध का शासक घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ रेजिस्टेंस को संगठित किया। जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब सत्ता, सेना और संसाधन अंग्रेजों के हाथों में थे, ऐसे समय में एक महिला का सामने आकर नेतृत्व करना कितना बड़ा साहस रहा होगा। बेगम हजरत महल की कहानी हमें बताती है कि लीडरशिप सिर्फ बैटल फील्ड में तलवार लेकर खड़े होने का काम नहीं है, कभी कभी लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को एकजुट करना, सही समय पर निर्णय लेना और अपने उद्देश्य से पीछे न हटना। रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल दो अलग जगहें, दो अलग परिस्थितियां, लेकिन एक ही भावना, स्वाधीनता। इसी जोश के साथ सुनते हैं अगला गीत। ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह से। आवाजें हैं ए आर रहमान और सुखविंदर सिंह की।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यह आमी चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर। कार्यक्रम की अगला गाना आप सुनेंगे फिल्म स्वदेश से, जिसे गाया है एआर रहमान ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की, इसे संगीतबद्ध किया है एआर रहमान ने।

आइए अब चलते हैं बंगाल की ओर, जहां एक बुजुर्ग महिला ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, एक उम्रदराज महिला हाथ में तिरंगा लिए आगे बढ़ रही हैं। सामने ब्रिटिश पुलिस है, उन्हें पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वे रुक रही नहीं हैं। ये कहानी है बंगाल की मातंगिनी हाजरा की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सन 1942 में मातंगिनी हाजरा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वे उस समय लगभग 73 वर्ष की थी। जरा सोचिए, जिस उम्र में आमतौर पर लोग आराम की जिंदगी की ओर

देखते हैं, उस उम्र में मातंगिनी हाजरा देश की आज़ादी के लिए सड़कों पर उतर रही थी। प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की गोलाबारी में वे घायल हुई, लेकिन कहा जाता है कि तिरंगा थामे वे आगे बढ़ती रही और वंदे मातरम का उद्घोष करती रही। उनका बलिदान हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि देश के लिए योगदान करने की कोई एज लिमिट नहीं होती। आइए गीत सुनते हैं, अगला गीत।

ये गाना आपने सुना फिल्म आनंद मठ से, आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की। इसी क्रम में अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म रंग दे बसंती से, जिसे गाया है दलेर मेहदी और चित्रा ने। शब्द रचना है प्रसून जोशी की, इसे संगीतबद्ध किया है ए आर रहमान ने।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234

0: या 1-800-210-0 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
1: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-210-0 पर और पाए समाधान।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामी चैनल है और आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर में हमारा सेगमेंट विमेन अचीवर्स। तो दोस्तों, अब हमारी कहानी हमें लेकर जा रही है असम की ओर, जहां एक टीनेजर लड़की ने भारत के तिरंगे के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हम बात कर रहे हैं असम की कनकलता बरुआ की। साल था 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। कनकलता बरुआ उस समय सिर्फ 17 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने गोहपुर के पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए निकले जुलूस का नेतृत्व किया। सामने हथियारबंद पुलिस थी, लेकिन कनकलता पीछे नहीं हटी और पुलिस की गोलीबारी में वे शहीद हो गई। जरा सोचिए, 17 साल की उम्र में जब एक युवा अपने भविष्य के लिए सपने देखता है, तब कनकलता बरुआ ने अपने देश के भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया, और यही उनकी कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ, चार अलग पीढ़ियां, चार अलग क्षेत्र और चार अलग संघर्ष। अगला गीत आप सुनने जा रहे हैं फिल्म फना से, जिसे गाया है महालक्ष्मी अय्यर ने।

तो दोस्तों, आज के चारों वुमेन अचीवर्स को हम चार वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कैसे कहूँगी? करेज, लीडरशिप, सेक्रीफाइस और पेट्रियटिज्म। रानी लक्ष्मीबाई हमें सिखाती हैं कि मुश्किल समय में नेतृत्व करना चाहिए। बेगम हजरत महल हमें बताती हैं कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, अपने अधिकार और सम्मान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मातंगिनी हाजरा हमें याद दिलाती हैं कि देश और समाज के लिए योगदान करने की कोई उम्र नहीं होती। और कनकलता बरुआ हमें दिखाती हैं कि सपने देखने के लिए उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला कभी छोटा नहीं होता। इसी थॉट के साथ आज के विमेन अचीवर्स इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेगमेंट से मुझे यानी आपकी रेडियो सखी अंबिका को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक अपने देश पर गर्व कीजिए, अपने कर्तव्यों को याद रखिए और बने रहिए हेलो जयपुर के साथ।

एक बार फिर से नमस्कार, खमागनी हेलो जयपुर, बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फरमाइशी फिल्म संगीत में। आप सुन रहे हैं 101.2 FM, जहां आप सुनते हैं आपके पसंदीदा तराने आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम की पहली फरमाइश आई है अशोक सिंह जी की जबलपुर से। आप सुनना चाहते हैं वीर ज़ारा फिल्म से गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर, उदित नारायण और प्रथा मजुमदार ने।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है नारायण पटेल शांतिलाल पटेल जी की जौहरी बाजार से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म सन ऑफ इंडिया से गाना, जिसे गाया है शांति माथुर और साथियों ने।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है लोकेश सारवान और उमा सारवान जी की रामगंज जयपुर से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्रेम रोग से ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का यामे चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जयपुर में फरमाइशी फिल्म संगीत। अपनी फरमाइश बताने के लिए डायल कीजिए नंबर 2200600 और 2200700। जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। कार्यक्रम में अगली फरमाइश आई है भूपेंद्र कुमार गुप्ता जी की कोटा से। आइए सुनते हैं आपके लिए ये नगमा।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है आफताब जी की, जिला जालौर राजस्थान से। आप सुनना चाहते हैं फिल्म कबूलीवाला से गाना जिसे गाया है मन्ना डे ने, शब्द रचना है प्रेम धवन की, इसे संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है गांव उड़ास जिला डीडवाना से मोहम्मद सिकंदर जी की। आप सुनना चाहते हैं बेवफा फिल्म से गाना जिसे गाया है गुलाम अली ने।

रूप सिंह जी की जिला कासगंज यूपी से। आप सुनना चाहते हैं शहीद भगत सिंह फिल्म से गाना, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़, हरभजन मान और मोहम्मद सलामत ने।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है शिवदासपुरा से आरती शर्मा जी की। आप सुनना चाहते हैं ये देशभक्ति गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जो खून गिरा पर्वत पर वो खून थमी।

कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश आई है छाजूराम नायक जी की कोटपुतली से। आप सुनना चाहते हैं क्लर्क फिल्म से गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने।

क्लर्क फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। साथ ही हेलो जयपुर से भी आपकी रेडियो सखी अंबिका तंवर को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो जयपुर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए

0: काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की कार्यक्रम विवरण में।

12:10 पर श्रोतागण सुन सकेंगे सुगम संगीत लखनलाल शर्मा के स्वर में। महिलाएं अपनी पसंद का कार्यक्रम महिला जगत सुन सकेंगी 1:30 पर। चर्चा होगी स्वतंत्रता दिवस पर और वार्ता होगी भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रोफेसर गिरिजा जोशी के साथ। श्रोतागण राजस्थानी लोक संगीत का आनंद ले पाएंगे 2:30 पर ऋतु माथुर की आवाज में। सुगम संगीत कार्यक्रम में देशभक्ति गीत सुनेंगे 3:30 पर। युवा श्रोता युवाणी सुनेंगे 5:00। जिले की चिट्ठी सुन सकेंगे 6:43 पर। स्पोर्ट्स स्कैन होगा 8:30 पर, जिसे हम दिल्ली से रिले करेंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा 10:00 दिल्ली से।

मात्र भारती रिले होगा दिल्ली से रात 9:30 पर। किसान भाइयों के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी कार्यक्रम होगा शाम 7:00। बातचीत होगी संरक्षित खेती सुरक्षित खेती श्री रामलाल मीणा के साथ।

7:30 पर होगा खेती बाड़ी। बातचीत होगी खरीफ फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता, डॉक्टर शालिनी शर्मा के साथ।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम लखनलाल शर्मा की आवाज़ में।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना लखनलाल शर्मा के स्वर में। यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये पहला गीत आपको सुनवाते हैं बॉर्डर 2 फिल्म से।

आवाजें हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और अरिजीत सिंह की, बोल हैं जावेद अख्तर, मनोज मुंतशिर के, संगीत है अनु मलिक और मिथुन का।

0: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

हकीकत फिल्म से लिया है हमने ये गीत, इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी, भूपेंद्र और मन्ना डे ने। बोल हैं कैफ़ी आज़मी के।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें निश्चित दिशा में आगे बढ़ना है। भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु से ही संभव होगा। उन्होंने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान किया ताकि देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए युवाओं का सहयोग जरूरी है। देश को अब डिजाइन से लेकर विनिर्माण तक पूरी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान देना होगा। इधर प्रदेश भर में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का उल्लास छाया हुआ है। स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह बीकानेर में आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और UPI पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से रूबरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम बीकानेर के जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान में रखा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बीकानेर को 5 ई-बसों की सौगात भी दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के लिए 12,112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। श्री शाह प्रदेश के किसानों को

0: किसान सम्मान निधि की 667 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपए की राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री 10,500 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वे अलवर और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सावन के पवित्र महीने की तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। कई स्थानों पर मेले भी भरते हैं। पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाएगी। शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्योढ़ी से ये सवारी निकलेगी। इसके लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए हैं। रामदेवरा मेले में यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 जोड़ी मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। इनमें भगत की कोठी रामदेवरा के बीच 3 जोड़ी तथा श्रीगंगानगर पोकरण के बीच 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन शामिल है। भगत की कोठी रामदेवरा मेला स्पेशल 28 अगस्त से 25 सितम्बर तक चलेगी। जोधपुर, राई का बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिवरी, ओसिया, मारवाड़ लोहावट और फलोदी में इस ट्रेन का ठहराव रहेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 अगस्त तक राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में धौलपुर जिले में भारी बारिश हुई। वहीं अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही सहित अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 14 सेंटीमीटर बरसात जोधपुर के बाड़ी में रिकॉर्ड हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
4: हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब आपका मनोरंजन करते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। तो आइए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और सुनते हैं ये मीठा सा गीत।

0: बी प्राक की आवाज़ में ये गीत आपने सुना योद्धा फिल्म से। बोल थे मनोज मुंतशिर के और संगीत था तनिष्क बागची का। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।
1: कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

ये देशभक्ति से उत्प्रोत गीत आपने सुना, पूरब और पश्चिम फिल्म से। आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और साथियों की, बोल थे इंदीवर के, और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत रोज़ा फिल्म से।

0: आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं क्या? आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है परदेश फिल्म से। आवाजें हैं हरिहरन, कविता आदित्य शंकर महादेवन की, बोल है आनंद बख्शी के और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आइए अब सुनते हैं महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियां अभिवादन स्वीकार कीजिए निधि दत्त भारद्वाज का। आप सभी को आकाशवाणी की महिला जगत टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सखियों, आज हम सभी बहनों ने अपने अपने घरों में तिरंगा फहराया है। आज जिस आज़ादी को हम महसूस कर पा रहे हैं, इस आज़ादी के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे और अब हमारी बारी है स्वतंत्रता के वर्तमान आयामों से अपने देश की सेवा करने की। भई आप सोच रही होंगी ना कि अब तो हम आज़ाद हैं, फिर और क्या करना है हमको? करना है सखियों, बहुत कुछ करना है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देकर एक सुंदर भारत के निर्माण की नींव रखी। अब भारत को बुलंदियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे आज के वर्तमान को बेहतर प्रयासों से हमें आने वाले भारत को दुनिया की ऊंचाइयों को प्राप्त करवाना है। हमारी आने वाली पीढ़ियां बेहतर और सुंदर विकसित भारत में निवास करेंगी, ऐसी हम कामना करते हैं। हम इसे कुछ इस तरह से समझते हैं सखियों कि आज हमारी जो सखियां जीवन के इस पड़ाव पर हैं जहां अब उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, वो देश के पर्यावरण, स्वच्छता और शिक्षा के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, वह फलदार वृक्षों को रोप सकती हैं। अभी देखिए, खूब बारिश हो रही है, प्रकृति सहयोग कर रही है। ऐसे में हम सखियां यदि एक एक सखी 10 फलदार पौधों को रोपे, पेड़ों को रोपे, उनका पालन पोषण करेगी, तो आने वाले 15-20 वर्षों में हम पेड़ हैं वो हमें फल देंगे, छाया देंगे, साथ ही साथ प्राणवायु, ऑक्सीजन भी देंगे। इस तरह से हम अपने देश को सुंदर बनाकर आज़ादी में सहयोग कर पाएंगे। और अब बात हमारी उन सखियों की जो बहुत सफाई पसंद है। भाई, अपने इस जुनून को वो अपने देश सेवा में भी उपयोग कर सकती हैं। वो अपने देश के लिए अपने दिन के कुछ समय को निकालें, मोहल्ले, कॉलोनी और खुद के क्षेत्र में सफाई के प्रति जागरूकता फैलाएं। अपने इस जुनून को वो देश के लिए उपयोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि देखियो सखियों, ऐसे कई उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर कई किलोमीटर के क्षेत्र की सड़कें, तालाब, बाग बगीचे और समुद्र के किनारों को एकदम साफ सुथरा किया है। यहाँ तक कि उन सभी को मेंटेन भी किया है और उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था भी की है। तो इस तरह से वह भी अपनी आज़ादी को एक दिशा दे सकती हैं। और अब बात उन सखियों की जिनके बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सखियों, आप पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के कर्णधारों को आपको ही संस्कार देने हैं। अभी पिछले दिनों जन

0: तंत्र मंत्र पर जो आंदोलन हुआ उनमें हमारी जैन जी ने जो भाषा कही उससे पूरा देश सन्न रह गया। आपने भी सुना होगा ना, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारी सुनने वाली सभी सखियां और उनके परिवारजन जो बच्चों के परवरिश में करने में व्यस्त हैं, आज आप सब पे बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। हमें हमसे कहां चूक हो रही है बच्चों को संस्कार देने में, इस ओर हमें अपना अवलोकन करना होगा, क्योंकि हमारे बच्चे यदि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अशोभनीय शब्दों का उपयोग कर सकते हैं तो समझ लीजिए अगला नंबर हमारा ही है। इसलिए हम सभी सुनने वाली श्रोताओं को, सखियों को ये कहना चाहते हैं कि वो हमारी पेरेंटिंग को दोबारा से रीइवैल्यूएट करें, और ये करना ही होगा। अपने बच्चों को भरपूर समय देना होगा, वो क्या चाहते हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा और अपनी परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने होंगे। ध्यान रखना है सखियों, इसमें हमारे बच्चों की सहमति ज़रूर लेनी है। तो सखियों, इस तरह से हम अपनी आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं, साथ ही साथ एक समृद्ध उज्ज्वल भारत के निर्माण में अपना सहयोग भी दे सकते हैं।
1: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत सखियों अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक वार्ता का जिसका विषय है भारत की स्वतंत्रता यात्रा और हमारी वार्ताकार हैं प्रोफेसर गिरिजा जोशी।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम विषय पर आज आपसे मुखातिब हूँ। 16वीं शताब्दी में भारत प्रसिद्धि एवं समृद्धि के शीर्ष पर था। विश्व के सभी राष्ट्र इसी समृद्धि से प्रभावित होकर भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे। लंदन स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्ञी एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 को भारत में व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1750 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शक्ति राजनीति का खेल शुरू करते हुए 1850 ईस्वी तक भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। 1857 में कंपनी शासन द्वारा भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से हस्तक्षेप करने से भारत में कंपनी का विरोध प्रारंभ हो गया, जिसकी परिणति के रूप में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अस्तित्व में आया। कुछ कमियों तथा फूट डालो और राज करो की नीति के कारण यह विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा। उनके व्यवहार में स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा जन विद्रोह के रूप में सामने आई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 से 1947 तक कांग्रेस के स्वरूपों में परिवर्तन जन आकांक्षाओं और परिस्थितियों के अनुरूप समक्ष आए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर कांग्रेस की क्रिया प्रणाली को 3 मुख्य कालों के रूप में विश्लेषित किया गया। 1885 से 1905 तक का प्रथम काल जो उदार या नरम राष्ट्रीयता के काल के रूप में था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट के प्रति विश्वास और सहयोग की नीति को अपनाकर भारतीय नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए याचना, स्मृति पत्रों तथा प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से प्रयास किए गए। इस विचारधारा के प्रमुख नेता दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा फिरोज शाह मेहता द्वारा शांतिपूर्ण तरीके और संयम से अपनी बात मनवाने का प्रयास किया गया। उदार रवैये की असफलता से 1906 से 1919 तक उग्र राष्ट्रीयता का एक काल का जन्म हुआ। इस काल में नवयुवकों में व्याप्त असंतोष का कारण कांग्रेस के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा विपिन चंद्र पाल, तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, के हाथों में आ गया। इनकी उग्र विचारधारा के कारण ये ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन लाने का समर्थन करते रहे। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरम और गरम दल के रूप में हुआ।

उदार और उग्र राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे। दोनों एकीकृत 1915 में हुए। 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा एक घोषणा हुई जिसमें बंगाल का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में होना प्रस्तावित किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया गया। जब उदार और उग्र राष्ट्रीयता के कालों में कांग्रेस द्वारा अपनी विचारधारा परिवर्तन से भी सफलता नहीं मिल पाई, तब कांग्रेस के 1920 से लेकर 1947 तक के महत्वपूर्ण काल में स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन समर्थित नेता को भारतीय जनमानस की भावनाओं को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व बना दिया। 1600 ईस्वी से 1920 तक की अवधि में भारत की वैश्विक पहचान अहिंसा, शांति और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की रही है। प्रधानतः भारत द्वारा इन विशेषताओं का प्रयोग अपनी सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया गया। गांधी जी ने भारतीय जनमानस की इच्छाओं को समझा, उनका विश्लेषण किया तथा उनको अपने साथ सम्मिलित करने हेतु उनकी ही जैसी छवि को अपनाकर अपने साथ सफलतापूर्वक जोड़ा। गांधी जी द्वारा किए गए यह प्रयास अद्भुत सामाजिक परिवर्तन का संवाहक बने। गांधी जी द्वारा दिए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह रूपी शस्त्रों की सहायता और स्वीकार्यता से राष्ट्रीय आंदोलन एक सबल जन आंदोलन के स्वरूप में प्रत्यक्ष रूप से सामने आया। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह और जन चेतना जागृत करने के शांतिपूर्ण आंदोलनों की दिशा से एक मार्ग प्रशस्त किया गया, जिसमें 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील खेती किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ था, इसको भी शासन तक पहुंचाया गया। 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद में किए गए आंदोलन, जो कि किसानों और मिल मजदूरों के खिलाफ थे, जिसमें कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रुख का विरोध किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दी गई सरकारी नौकरियों, उपाधियों और वस्तुओं का शांतिपूर्ण बहिष्कार करके अपना असहयोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ रखा। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बड़ा राष्ट्रीय अहिंसक आंदोलन था, जिसमें विनम्रता के साथ कानूनों की अवहेलना करनी थी। इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा से हुआ, जिसमें गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा कर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के काले कानून को तोड़ा था। 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान किया गया, जो कि एक जन आक्रोश और प्रबल समर्थन के साथ पूरे देश में फैल गया। ब्रिटिश शासन की मजबूती धीरे धीरे कमजोरी बनने लगी। अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम की सार्थकता से परिचित होकर भारत छोड़ने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 1857 से 1947 तक की स्थितियों का विश्लेषण इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नियत प्रवृत्ति में नकारात्मकता के कारण भारतीय जनमानस की सरल, सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्य वाली भावनाओं में कटुता, फूट डालो और राज करो तथा वैमनस्य की उपस्थिति हो गई, जिससे मूल भारतीय संकल्पना तथा पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। गांधी जी के नेतृत्व ने भारत की गौरवशाली परंपरा को पुनः स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अंग्रेज शासन ने स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता तथा उसकी सबलता को दृष्टिगत रखते हुए सत्ता हस्तांतरण हेतु लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। इन्होंने एक योजना का प्रारूप तैयार किया, जिसमें हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान का 2 राष्ट्रों में विभाजन तथा सत्ता हस्तांतरण का विवरण दिया गया। इस प्रारूप को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसको भारत के लिए कांग्रेस द्वारा तथा पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1947 का 20 धाराओं से युक्त भारत शासन अधिनियम अस्तित्व में आया। इसी के आधार पर लंबे संघर्ष प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसमें भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान देने वाले किसानों, व्यापारियों, शिक्षकों, समाज सुधारकों तथा जन सामान्य का योगदान भी अतुलनीय रहा। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया योगदान, आजाद इन फौज की स्थापना करके सैन्य बल की सहायता से स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प करने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा देकर देश को एकजुट करने का कार्य किया, क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई और

0: छोटी सी उम्र में फांसी को गले लगाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिखरी हुई देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत के एकीकृत रूप को सुदृढ़ता प्रदान की। क्रांतिकारी सेनानियों मंगल पांडे, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल ने भी स्वतंत्रता की अलख को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, उषा मेहता, कनकलता बरुआ, एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी ने भी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अपना योगदान दिया। लंबे स्वतंत्रता संघर्ष, आपसी कटुताएं, फूट डालो राज करो तथा कुछ भारतीयों द्वारा अंग्रेज शासन का समर्थन और सहयोग की प्रवृत्ति ने गुलामी के लंबे समय को अभिशाप के रूप में अनुभव किया। जन सहयोग, जन इच्छा और जन आंदोलन के तूफान तथा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के चमत्कारिक नेतृत्व से भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। आज आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर एक शक्तिशाली के राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है। यही भारत की स्वतंत्रता का भी लक्ष्य है। धन्यवाद
1: भाई। मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
6: कार्यक्रम चल रहा है महिला जगत और सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था भारत की स्वतंत्रता यात्रा और हमारी वार्ताकार थी प्रोफेसर गिरिजा जोशी। और सखियों, अब बात तीज की। आज हमारी सभी सखियां तीज की तैयारी कर रही हैं, खूब मजे से सेलिब्रेट भी कर रही हैं। सखियों, सावन का महीना आते ही प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, चारों ओर झूले, लोकगीत, मेहंदी और खुशियां आप देख ही रही हैं। सावन की इस ऋतु में हम सब मना रहे हैं हरियाली तीज। सखियों, तीज का पर्व विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र प्रेम और समर्पण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या और अटूट आस्था के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। आज अब सभी सखियों ने लहरिया पहना है, मेहंदी रचाई है और अब झूला झूलते हुए आकाशवाणी का अपना फेवरेट प्रोग्राम महिला जगत सुन रही हैं। सखियों, ये तीज केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि है प्रेम, विश्वास, सौंदर्य, प्रकृति और पारिवारिक रिश्तों की मिठास का उत्सव भी है। यह पर्व हमें हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। इस सावन तीज पर हम अपनी परंपराओं को सहेजने और प्रकृति से प्रेम का संदेश लेकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और घेवर के स्वाद का आनंद भी ले रहे हैं। तो हम सभी हरियाली छाए, खुशियां मुस्कुराए और जीवन को प्रेम से भर जाए, इस मंत्र को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और झूला झूलेंगे।

सख्यों, आज स्वतंत्रता दिवस पर उम्मीद है आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा और इसके साथ साथ आपने आज ये संकल्प भी लिया होगा कि आप भी किसी भी तरह से आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हालात हैं, उसके अनुसार अपने देश की सेवा करेंगी जिससे कि हमारे देश ऊंचाइयों को छू सके। तो महिला जगत का ये अंक सखियों बस अभी अभी तक, अगले महिला जगत कार्यक्रम तक निधि दत्त भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का

0: निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
2: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
4: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से

0: स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
2: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत। और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है फिल्म संगीत, और अभी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत राजी फिल्म से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह, मणि महादेवन, रवि मिश्रा और अरशद ने। बोल हैं गुलजार के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का। आइए कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

इस गीत को हमने लिया है स्वदेश फिल्म से। गायक हैं एआर रहमान, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत है एआर रहमान का।

ये आकाशवाणी के जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और दोस्तों अगला गीत हमने आपके लिए चुना है रंग दे बसंती फिल्म से, जिसे गाया है दलेर मेहंदी और चित्रा ने। बोल है प्रसून जोशी के, संगीत है ए आर रहमान का।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं AR रहमान की आवाज में, जिसमें गीत लिखा है महबूब ने और कंपोज किया है AR रहमान ने।

दोस्तों, फिल्म संगीत कार्यक्रम चल रहा है और हम आपको सुनवा रहे हैं मीठे मीठे मधुर मधुर गीत। तो आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा देते हैं, जिसे हमने लिया है स्लम डॉग मिलेनियर से। गीत को गाया है सुखविंदर सिंह, तन्वी शाह और महालक्ष्मी अय्यर ने। बोल हैं गुलजार के और संगीत है AR रहमान का।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आइए अब आपको सुनवाते हैं आपके साथ कार्यक्रम, जहां आप सुनेंगे श्रोताओं के पसंद के फरमाइशी गीत।

ना पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल, और स्टूडियो की घड़ी ने इशारा कर दिया है कि अब समय हो गया है आपके पसंद के फरमाइशी गीत सुनने का आपके साथ कार्यक्रम में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत, जिसकी फरमाइश की चिट्ठी हमें भेजी है रेलवे कॉलोनी भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है आपके साथ और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत आप सुन रहे हैं। और क्या करना है फरमाइशी गीत सुनने के लिए, आपको कॉल मिलाना है स्टूडियो नंबर्स पे, जो नंबर है 2200600, 2200700, 2366477, और जयपुर का STD कोड है 0141। तो अगली फरमाइश हमारे पास आई है बशीर अहमद जी, बाड़मेर जिले के मीछड़ी गांव से, नारायण पटेल जी, घासीलाल पटेल जी, जौहरी बाजार से। ये सब सुनना चाहते हैं सिकंदर आजम फिल्म का जहां डाल डाल पर गीत। तो आइए सुनवाते हैं इनकी पसंद का गीत, आ रहा है इनके रेडियो सेट पर।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल आप सुन रहे हैं दोस्तों। कार्यक्रम चल रहा है आपके साथ, जहां हम सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश के आपके पसंदीदा गीत। करना क्या है आपको पसंदीदा गीत सुनने के लिए? स्टूडियो लाइंस में लानी है 2200-600-22000-700-2366-477 नंबर पर। जयपुर के एसटीडीडी कोड लगाना ना भूलिए 0141। आइए अगली फरमाइश हमारे पास किसकी आई है सुन लेते हैं। राम सिंह चौहान जी चाकसू से कर्मा फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं। उनके साथ ही प्रकाश जांगिड़ जी मुरलीपुरा से भी कर्मा फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गीत, इनके रेडियो सेट पर आ रहा है।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। कुछ इसी जज्बे के साथ आज हम सब देशवासी मना रहे हैं अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के फरमाइशी गीत आपके साथ कार्यक्रम में। तो आपकी फरमाइश का अगला गीत हम सुनवा देते हैं। अगली फरमाइश है मोहम्मद आरिफ जी की, जो सुनना चाहते हैं जुड़वा फिल्म से ये गीत।

0: चलती है कनों से पारा, चलती है कनों से पारा, चलती है कनों से पारा।
1: दोस्तों, आपकी फरमाइश की गीतों का कार्यक्रम आपके साथ आप सुन रहे हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है फूल जहां ईदगाह जयपुर से, जो सुनना चाहती हैं हिंदुस्तान की कसम फिल्म का ये गीत। तो फूल जहां जी, ये गीत आ रहा है आपकी फरमाइश पे आपके रेडियो सेट पर।
2: बा अदब होशियार

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है और आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके साथ। तो अगली फरमाइश हमें भेजी है भूपेंद्र कुमार गुप्ता कोटा से। ये सुनना चाहते हैं जय चित्तौड़ मूवी से ये गीत। तो भूपेंद्र कुमार जी, ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

आपके पसंदीदा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके साथ सुन रहे हैं आप, और अपने फरमाइशी गीत सुनने के लिए करना क्या है आपको? आपको मिलाने हैं स्टूडियो नंबर 2200600 2200700 2366477 और जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। तो अगली फरमाइश हमारे पास किसकी आई है मदन गोपाल स्वामी जी की सुजानगढ़ से। ये सुनना चाहते हैं उपकार फिल्म से ये गीत, तो आइए सुनवा देते हैं इनको इनकी पसंद का ये गीत।

0: जी है सत्यनारायण जी ने सीकर से, ये सुनना चाहते हैं देश प्रेमी फिल्म का ये गीत। तो आइए सुनवा देते हैं इनको देश प्रेमी फिल्म से, ये इनकी पसंद का नगमा।
1: नफरत की

आपकी पसंद के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके साथ आप सुन रहे हैं और अगली फरमाइश हम आपको सुनवाने वाले हैं शैलेश तोमानी जी की पसंद पर। मालवीय नगर से इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है, नया दौर फिल्म से ये गीत ये सुनना चाह रहे हैं।

दोस्तों, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि अब समय हो गया है आपके साथ कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश का। तो आखिरी फरमाइश मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। रूप सिंह जी, अजीत शर्मा, रोशन लाल जी, किशन पाल जी, काठगंज यूपी से इन्होंने भेजी है ये फरमाइश। सरफरोश फिल्म से ये गीत ही सुनना चाहते हैं। तो ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कीप इंजॉइंग, कीप लिसनिंग।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: नमस्कार दोस्तों, शाम के ठीक 5 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवाओं का अपना लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी। मैं आपकी दोस्त अनुष्का गुजर, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल 15 अगस्त आता है, हम तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जिस आज़ादी का हम आज आनंद ले रहे हैं उसकी कीमत क्या थी? आज मैं आपको उन लोगों की कहानी सुनाना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज हम खुलकर अपने सपने देख सकते हैं। जब भारत अंग्रेजों के शासन में था, तब हर भारतीय का जीवन आसान नहीं था, अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ भेदभाव होता था। किसानों पर भारी कर लगाए जाते थे, भारतीय उद्योगों को कमज़ोर किया जाता था और अपनी बात कहने की आज़ादी भी नहीं थी। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोगों ने यह तय किया कि बस अब बहुत हो गया, अब हम 1857 की बात करें तो इसमें भारत में सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। इसमें बहुत से वीर सेनानियों ने और क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। इस क्रांति में मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया, टाट्या टोपे बेगम हजरत महल कुंवर सिंह जैसे अनेक वीरों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। भले ही यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने पूरे देश में आज़ादी की चिंगारी जला दी। इसके बाद समय बदला और स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया रूप लिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने लोगों को बताया कि बिना हिंसा के भी एक साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया। लेकिन आज़ादी की लड़ाई केवल अहिंसा से ही नहीं लड़ी जा सकती थी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने साहस से युवाओं के दिलों में क्रांति की लौ जलाई। भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने

अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी स्वीकार कर ली। उनका विश्वास था कि विचारों को कभी फांसी नहीं दी जा सकती है। इसी तरह चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था कि वे कभी अंग्रेजों के हाथ जीवित नहीं आएंगे, और उन्होंने अपना वचन निभाया। जब भी देशभक्ति की बात आती है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम गर्व से लिया जाता है। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और युवाओं को पुकारते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये केवल एक नारा ही नहीं था, बल्कि देश के लिए सब कुछ समर्पित करने का आह्वान था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संघर्ष में सिर्फ पुरुषों का ही सहयोग नहीं था, महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। सरोजनी नायडू, अरुणा असफल अली, उषा मेहता, कस्तूरबा गांधी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे अनेक महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो सेवा चलाकर स्वतंत्रता सेनानियों तक संदेश पहुंचाया। उस समय रेडियो भी आज़ादी की लड़ाई का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया था। आज हम जिन अधिकारों का आनंद ले रहे हैं, खुलकर पढ़ना, अपनी बात कहना, अपने सपनों को चुनाव करना, ये हमें यूं ही नहीं मिले हैं। इनके पीछे लाखों ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष, त्याग और बलिदान है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। आज मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो शायद इस वक्त अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। किसी माँ की आंखें आज भी अपने बेटे के घर लौटने का इंतज़ार कर रही होंगी। किसी की पत्नी को शायद अपने साथी की आवाज़ सुनने का इंतज़ार होगा। किसी बच्चे की आंखें अपने पापा को देखने के लिए तरस रही होंगी।

और वो बेटा, वो पति और वो पिता अपने परिवार से दूर सीमा पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिर्फ उसका घर ही नहीं, पूरा देश ही उसका घर है। देश के वीर जवानों को दिल से सलाम, जय हिंद। साथ ही साथ दोस्तों, आज एक खूबसूरत त्यौहार भी है। सावन की फुहारे, चारों ओर हरियाली और झूलों की मधुर आवाज़, ये मौसम अपने साथ लेकर आता है एक बेहद खूबसूरत त्यौहार। जी हाँ, बिल्कुल, हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रेम, खुशियाँ और हमारी समृद्ध लोक संस्कृति का उत्सव है। इस दिन महिलाएं सुंदर हरे परिधान पहनकर पहनती हैं, हाथों में मेहंदी सजाती हैं और झूले झूलते हैं हुए तीज के लोकगीतों का आनंद उठाती हैं। कहीं सखियों की हंसी गूंजती है तो कहीं लोकगीतों की मिठास सावन के मौसम को और भी खूबसूरत बना देती है। तो आइए, हर हरियाली तीज पर हम भी अपने परंपराओं से जुड़े, खुशियाँ बांटे और प्रकृति की इस खूबसूरत हरियाली का स्वागत करें। आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ आगे गाने की ओर बढ़ते हैं।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100।

0: 1800 पर और पाई समाधान।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420022233।

आज की हमारी पहली रोजगार सूचना राजस्थान की 5 विद्युत कंपनियों से है, RU, RVUN, RVPN, JVVN, AVVN और JDVVN में जूनियर इंजीनियर फर्स्ट के टोटल 869 पदों पर भर्तियां हैं। लास्ट अप्लाई करने की डेट है 25 अगस्त 2026। अप्लाई करने के लिए विजिट करें requirement.rajasthan.gov.in। मैं फिर से दोहराती हूँ, requirement.rajasthan.gov.in। आज की हमारी दूसरी रोजगार सूचना ICFRE में असिस्टेंट डायरेक्टर और अकाउंट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट अप्लाई करने की डेट है 15 सितंबर 2026। अप्लाई करने के लिए विजिट करें icfre.gov.in। मैं फिर से दोहराती हूँ icfre.gov.in।

तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चुका है आपसे अनुमति लेने का। मैं अनुष्का और आप सुन रहे थे आकाशवाणी का कार्यक्रम युववाणी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों की और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य धारा।
1: साहित्य धारा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनिल कुमार शर्मा का कविता पाठ।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी भाई बहनों को नमस्कार, आदाब। कल की सी बात लगती है, हमारे बीच रहने वाला कोई साथी, किसी का भाई, किसी वीरांगना का सुहाग, किसी बूढ़े माँ बाप का दीपक, अचानक इस माटी का कर चुका कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। अनगिनत ऐसी विभूतियां हैं जो अपने प्राणों की आहुति देकर चली गई, और उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जिनके नाम आज तक इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से दर्ज हैं। इस स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐसे अनगिनत सूरमा रहे हैं जिनकी बहादुरी के कारनामे आज तक हम तक पहुंच ही नहीं पाए। उनका नाम कभी भी उजागर नहीं हो पाया। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने परिवार से दूर रहे, अपनी पहचान को जीवन भर छिपाए रखा, गुमनाम रहकर सिर्फ देश और देशवासियों की सेवा की और फिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। शत्रु के कारागार में अपनी खाल को खिंचवाना उन्होंने मंजूर किया, परंतु इस माटी से कभी दगा नहीं किया। कभी जबान से उफ

तक नहीं की। हर प्रताड़ना को सहते रहे, परंतु देश प्रेम का जज्बा उन्हें कभी भी तोड़ नहीं पाया। भाइयों और बहनों, दुख तो इस बात का है कि आज की युवा पीढ़ी भी उनके बलिदान से अनभिज्ञ है, और जो भिज्ञ हैं वे अपने संकुचित दृष्टिकोण और स्वार्थ में शायद सब कुछ भुला चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर इसी पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ। हो सके तो उन शूरवीरों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करें और हर घर तिरंगा फहराएं। मेरी कविता का शीर्षक है, वो कल यहीं तो था। मिटा था जो देश के लिए, मिटा था जो देश के लिए, वो कल यहीं तो था। चर्चाओं का बड़ा मेला लगा था, चर्चाओं का बड़ा मेला लगा था, वो कल यहीं तो था। कब यादों में धुल गया, पुर्जा पुर्जा जल गया। कब यादों में धुल गया, पुर्जा पुर्जा जल गया, इतिहास में भी जगह नहीं, वो गुमनामी में ढल गया। कब यादों में धुल गया, पुर्जा पुर्जा जल गया, इतिहास में भी जगह नहीं, वो गुमनामी में ढल गया। आँखों का वो भी नूर था, किसी के माथे का सिंदूर था, बूढ़े बाप की आस था, बहनों का प्रभास था। आँखों का वो भी नूर था, किसी के माथे का सिंदूर था, बूढ़े बाप की आस था, बहनों का प्रभास था। तिरंगा कभी लिपटा, कभी वो भी रह गया। तिरंगा कभी लिपटा, कभी वो भी रह गया। क्यों मरा, कैसे मरा, कितना दर्द वो सह गया। तिरंगा कभी लिपटा, कभी वो भी रह गया। क्यों मरा, कैसे मरा, कितना दर्द वो सह गया। कौन था वो शख्स भला, कौन था वो शख्स भला, क्या नाम था उसका, कहीं कोई चर्चा नहीं। कौन था वो शख्स भला, क्या नाम था उसका, कहीं कोई चर्चा नहीं, जो कल यहीं तो था। चर्चाओं का बड़ा मेला लगा, वो कल यहीं तो था। फ़र्ज निभाने का जुनून था शायद, फ़र्ज निभाने का जुनून था शायद, कसूर यही था उसका। फ़र्ज निभाने का जुनून था शायद, कसूर यही था उसका। वो सिरफिरा जज्बाती था और हम अव्वल दर्जे के नाशुकरे। जोश जोश में कुर्बानी दे गया, नाम रही न पहचान, फहरिस्त जब लंबी लगने लगी और हम मिटाते गए निशान। जोश जोश में कुर्बानी दे गया, नाम रही न पहचान, फहरिस्त लंबी लगने लगी और हम मिटाते गए निशान। वो तब भी अनजान था, वो तब भी अनजान था, वो अब भी अनजान है, फिर भी हम दम भरते हैं, हम शहीदों के कदरदान हैं। वो तब भी अनजान था, वो अब भी अनजान है, फिर भी हम दम भरते हैं, हम शहीदों के कदरदान हैं। कुछ भी तो याद नहीं, कुछ भी तो याद नहीं, पर कहीं कोई गिला नहीं, हम उनके बलिदान से महफूज हैं, कभी क्या इसका भान रहता है। कुछ भी तो याद नहीं, कहीं कोई गिला नहीं, हम उसके बलिदान से महफूज हैं, कभी क्या इसका भान रहता है। 15 अगस्त आती तो है, पर क्या वो दिल में रहता है। 15 अगस्त आती तो है, पर क्या वो दिल में रहता है। वो हम ही में से एक था, वो हम ही में से एक था जिससे दुश्मन तक हिल गया। वो हम ही में से एक था जिससे दुश्मन तक हिल गया। देश प्रेम की जिद में वो इस माटी में मिल गया। ना खुदीराम बोस याद है, ना ही अब्दुल हमीद। ना खुदीराम बोस याद है, ना ही अब्दुल हमीद। ना दुर्गा भाभी का जिक्र है और ना ही खेत्रपाल की फिक्र है। ना खुदीराम बोस याद है, ना ही अब्दुल हमीद। ना दुर्गा भाभी का जिक्र है, ना खेत्रपाल की फिक्र है। कर्जदार हैं हम जिसके हम नाम तक भुला बैठे। कर्जदार हैं हम जिसके हम नाम तक भुला बैठे। कैसे उसको भूल गए, कैसे उसको भूल गए, जो कल यहीं पर था। चर्चाओं का मेला लगा था, वो कल यहीं तो था। चर्चाओं का मेला लगा था, वो यहीं तो था। आज हम आज़ादी के इस पावन पर्व पर सभी वर्गों से ये आशा रखते हैं कि वे इस देश, इस माटी की आन बान और शान को हमेशा बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।

0: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार शर्मा से कविता पाठ। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: साहित्य धारा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य धारा। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर और दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय शाम के 5:30 होने को है और अब आप सभी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: चक दे इंडिया फिल्म से आपने सुना ये गीत। आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और साथियों की। गीत के बोल थे जयदीप साहनी के और संगीत था सलीम सुलेमान का।
1: तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
0: फिल्म संगीत का अगला गीत प्रस्तुत है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से। आवाज़ें हैं नीति मोहन और विशाल डाडलानी और साथियों की। गीत के बोल लिखे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया विशाल और शेखर ने।

कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अब अगला गीत आपको सुना रहे हैं मणिकर्णिका फिल्म से ही। गीत में आवाज़ है शंकर महादेवन की। गीत के बोल लिखे प्रसून जोशी ने और संगीत दिया शंकर एहसान लोय ने।

देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।

मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलू ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म लगान से। आवाज़ है AR रहमान की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रस्तुत है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बोल है मनोज मुंतशिर के और संगीतकार है आर को प्रभु मुखर्जी।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। फिल्म संगीत का हमारा अगला कार्यक्रम 6:05 पर पुनः प्रसारित होगा।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से

0: ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों की कार्यक्रम रूपरेखा में। शाम 7 बजे प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। बातचीत होगी संरक्षित खेती सुरक्षित खेती। वार्ताकार होंगे श्री राम मीणा।

शाम 7:30 पर प्रसारित होगा किसान भाइयों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी। बातचीत होगी खरीफ फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता, डॉक्टर शालिनी शर्मा के साथ। रात 8 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष समाचार तरंग। स्पोर्ट्स स्कैन का कार्यक्रम 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। समाचार संध्या का कार्यक्रम प्रसारित होगा 8:45 पर। 9 बजे प्रसारित होगा न्यूज़ 8:09। 9:15 पर प्रसारित होगी उर्दू में समाचार। रात 9:30 पर प्रसारित होगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती। यह सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा रात को 10 बजे। यह कार्यक्रम भी हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। इस समय शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार। ये समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है।
2: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया है। जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है।

0: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 वर्ष तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में सरकार स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। लातविया ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप के तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। 20 अगस्त को भारत डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्सपो की मेजबानी करेगा। और खेलों में गोल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। उधर नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में भारत और वेल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म किस्मत से। आवाज़ है अरुण कुमार और साथियों की। फिल्म को संगीतबद्ध किया अनिल विश्वास ने और

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से। फिल्म संगीत का अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म दीदी से। आवाज़ें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की है, और इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। गीत को संगीतबद्ध किया एन दत्त ने।

कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है सन ऑफ इंडिया फिल्म से। इस गीत में आवाज़ें हैं शांति माथुर और साथियों की, और गीत को संगीतबद्ध किया है नौशत ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का अगला गीत प्रस्तुत है हम हिंदुस्तानी फिल्म से। आवाज़ है मुकेश की और बोल प्रेम धवन की, और संगीत है उषा खन्ना का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रस्तुत है सिकंदर आजम फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने और संगीतबद्ध किया हंसराज बेहाल ने।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज पर, और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार के बाद होगी जिले की चिट्ठी और उसके बाद प्रसारित होंगे राजस्थानी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस का उल्लास। बीकानेर में हुए राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राज्य को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और हरियाली तेज, आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तेज माता की शाही सवारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। श्रोताओं, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने कोविड महामारी, यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया संकट जैसी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के नागरिक देवो भव सिद्धांत के कारण पिछले दशक में ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो संकट काल में कारगर साबित हुई।
1: इतने बड़े संकट

0: के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इससे देश को AI के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांवों, शहरों और स्कूलों में 15 साल तक के मेधावी बच्चों की पहचान के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा और चुने गए बच्चों को अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है और 2030 में भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा।
0: स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती।
1: प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कदम से बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिलने के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवारों में कोचिंग पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के सम्मान का विषय है।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: इधर प्रदेश भर में भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस का उल्लास चरम पर रहा। स्वाधीनता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बीकानेर में आयोजित किया गया। करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया। प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति और UPI पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
2: आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा तब तिरंगा दुनिया के शिखर पर भारत के गौरव और सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर के लहरा रहा होगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर स्थित लोकभवन में झंडारोहण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने युवाओं से संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकसित राजस्थान के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। राजधानी जयपुर में जिलास्तरीय समारोह चौगान स्टेडियम में हुआ। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ध्वजारोहण किया। इससे पहले उन्होंने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में ध्वज फहराया। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। विभिन्न जिला मुख्यालयों पर हुए समारोह में मंत्रियों और जिला कलेक्टरों ने ध्वजारोहण किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भीलवाड़ा में राष्ट्र ध्वज फहराया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में झंडारोहण किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से भी रूबरू हुए। जिले के जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में श्री शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति के विचार, नवाचार, कौशल और उद्यमिता विकसित प्रदेश के आधार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इसके लिए राजस्थान युवा नीति सहित 36 नीतियां लाई गई हैं और स्टार्टअप तथा स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रदेश के लिए 12,112 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचेंगे और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर श्री शाह की अगुवाई करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर जिलों में 1,877 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किसानों को सम्मान निधि की 667 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ रुपए की राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। श्री शाह 10,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा सरस डेयरी के 200 करोड़ रुपए के नए प्लांट का शिलान्यास और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह कल निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में 442 कार्यों का शिलान्यास और 502 कामों का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री निम्बाहेड़ा के अंबेडकर राजकीय कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। समाचार कक्ष से डॉ. ज्योति पारीक।
0: जयपुर में आज नारी शक्ति सम्मान उत्सव का आयोजन किया गया। सक्षम नारी, स्वस्थ बचपन और समृद्ध राजस्थान की थीम पर हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण पर जोर देना था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया। श्री शर्मा ने कहा कि महिलाएं बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र की नींव है और सरकार महिलाओं की बेहतर शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। प्रदेश भर में आज हरियाली तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाओं के इस विशेष पर्व पर पर्यटन विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में तीज माता की शाही सवारी निकाली जा रही है। बैंड बाजों और शाही लवाजमे के साथ जनानी ड्यूटी से निकली इस सवारी के लिए प्रशासन ने यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। इसी कड़ी में कल बूढ़ी तीज की सवारी निकाली जाएगी। सावन के पवित्र महीने की तीज को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की जाती है। तीज पर मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोक गीतों का भी विशेष महत्व है। प्रदेश में तेज बारिश का दौर कमजोर पड़ गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर बरसात हुई है। सवाई माधोपुर में आज तेज बरसात हुई, जबकि राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राज्य में 18 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जयपुर और भरतपुर संभाग के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। इससे प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में फिलहाल कमी रहने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस का उल्लास। बीकानेर में हुए राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, विकसित राजस्थान 2047 के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राज्य को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और हरियाली तीज आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तीज माता की शाही सवारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। आप सभी को स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज झालावाड़ में जिला स्तरीय समारोह राजकीय खेल संकुल में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर परेड का निरीक्षण भी किया। इसके बाद पुलिस, होमगार्ड और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के दलों ने मार्च पास्ट किया। उसके बाद समारोह में राज्यपाल के संदेश का पठन किया गया तथा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभाओं को पुरस्कार और प्रशंसा पत्र दिए गए। इससे पहले जिला कलेक्टर ने शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया और विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार पुलिस की ओर से विशेष पुलिस पराक्रम कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसमें जवानों ने राइफल प्रदर्शन, विभिन्न प्रकार के पिरामिड बनाने, आग के गोलों से निकलने सहित साहसिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया। समारोह में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के करीब 1100 बच्चों ने सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन किया, वहीं 300 बालिकाओं ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिले के कालीसिंध बांध पर तिरंगे के रंगों से रोशनी की गई। रात के अंधेरे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सजा बांध और जलाशय का नजारा देखते ही बना। इस आकर्षक नजारे को देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। इसी कड़ी में शहर का पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जिला प्रशासन और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से आयोजित देशभक्ति सांस्कृतिक संध्या में जिले के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। प्रस्तुतियों के दौरान ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। जिले के झालरापाटन में पिछले दिनों फॉलो अप शहरी सेवा शिविर लगाया गया। इसमें सालों से लंबित 114 पट्टे वितरित किए गए। इनमें पुराने लंबित मामलों के साथ नए आवेदनों पर भी त्वरित कार्रवाई की गई। शिविर में जिला कलेक्टर ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से भी आवेदन करने की अपील की जिन्होंने अभी तक पट्टे के लिए आवेदन नहीं किया है। पारंपरिक हस्तकरघा बुनाई कला को प्रोत्साहन देने और उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से पिछले दिनों जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया और विभिन्न श्रेणियों में श्रेष्ठ उत्पादों का चयन भी किया गया। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि बुनकर पुरस्कार योजना के तहत कुल 9 आवेदनों के साथ उत्पाद प्राप्त हुए थे। चयन समिति ने सभी उत्पादों का गुणवत्ता, डिजाइन, पारंपरिक शिल्पकला और नवाचार के आधार पर परीक्षण कर विजेताओं का चयन किया है। पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा संचालित हाई रिस्क प्रेगनेंसी सघन मॉनिटरिंग अभियान शुरू किया गया। इसके तहत जिला कलेक्टर ने ग्राम रलायता में हाई रिस्क प्रेगनेंसी से चिन्हित गर्भवती महिला के घर पहुंचकर गोद भराई रस्म का शुभारंभ किया। जिले में वन्य जीवों के संरक्षण और अवैध शिकार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए वन विभाग ने सघन अभियान चलाया। अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने जीवित तीतर, तोते, शिकार में प्रयुक्त फंदे, पिंजरे और एक मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। ये कार्रवाई वन विभाग की ओर से की गई है। जिले में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और राहत बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। झालरापाटन स्थित गोमती सागर तालाब पर हुई इस मॉक ड्रिल में SDRF, NDRF और भारतीय सेना की ओर से जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने भाग लिया। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार।

0: पहली खास समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारी प्राचीरू देश ने संबोधित करया। प्रदेश भर में स्वाधीनता दिवस रो उमाव चरम माथे रियो। बीकानेर में विया राज्य थर्रा जलसा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कयो विकसित राजस्थान 2047 सारू सरकार बरोबर कोशिश में। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काले प्रदेश रा दौरा माथे रहेला। राज्य ने 12,112 करोड़ रुपया विकास कमारी सौगात देवेला। और हरियाली तीज आज राजधानी जयपुर में निकाली जा रही है तीजरी शाही सवारी। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह। सुनन वाला सगला ने 80वां स्वतंत्रता दिवस री घनी घनी शुभकामनावां। और अबे समाचार विगतवार। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रियो है। ई मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किलारी प्राचीरू देशवासियों ने संबोधित करया। ई मौके पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम रो गायन वियो। ई साल रो आयोजन माय 2047 रा विकसित भारत बनावण माय युवा शक्ति री भूमिका माथे जोर दिरिज्यो। प्रधानमंत्री कयो के लाडला 12 साला में करोड़ों देशवासियों रा संकल्प समर्पण हर हर होती कोशिश री बदौलत देश ने नवी ऊंचाइयां ने छू लियो है। एर कई करड़ा संकटों बारे निकलण में कामयाबी रियो है। श्री मोदी कयो के तयशुदा नीतियां तैयारियां और भगतसर उठाए जा कदमा रे कारण देश कोविड महामारी यूक्रेन और पश्चिमी एशिया संकट जैसी चुनौतियों रो डट ने मुकाबलो करियो। प्रधानमंत्री कयो के सरकार नागरिक देवो भवे सिद्धांत रे कारण लाडला दशक में इन तरह रा बंदोबस्त करया है जो संकट काल में कारगर साबित हुआ है।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है पेट्रोल भी है यूरिया भी है हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे चल रहे।
0: प्रधानमंत्री कहो के आवता एक साल में 1 करोड़ नौजवानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में सिखाण रो फैसलो ले रिजो है। इणु देश ने AI हलका में अगाड़ी बनावण में मदद मिलेला। ई मौके वणा कहो के गाँव शहर और स्कूलों में 15 साल तई रा हुनरवान टाबरा री पिछाण करण सारू प्रतिभा खोज अभियान चलाओ जाएला और चुणिया टाबरा ने अच्छा खिलाड़ी बनावण सारू सिखावण दी जाएला। श्री मोदी कहो के भारत खेल री दुनिया में आपरी पिछाण बना रियो है और साल 2030 में भारत राष्ट्रमंडल खेल री मेजबानी करेला।
1: स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बन करके आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती।
0: प्रधानमंत्री गरीब और मसला तबका रा पिरवाना रा टाबना सारू मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और आवता एक साल में 1 करोड़ नौजवानों ने AI कौशल सिखाउन देवण रो ऐलान करियो। वणा कयो के ई कदम टाबरा ने ऊंचा थरी शिक्षा मिलण रे साथ ही मसला तबका रा पिरवाना में कोचिंग माथे खर्च होने वाला करोड़ों रुपया की बचत वेला। ई मौके प्रधानमंत्री संसद और राज्य विधानसभा में 33% महिला आरक्षण सारू सगला राजनीतिक दलों मदद री अरज करी। वणा कयो के ओ महिलावां रा सम्मान रो मुद्दो है और देश रा नीति बनावण में योगदान रो मौको महिलावां ने दियो जावणो चाहिए।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अठिने प्रदेश में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस रो उमाव चरम माथे रियो। स्वाधीनता दिवस रो राज्य थर रो जलसो बीकानेर में वियो। करणी सिंह स्टेडियम में विया एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ध्वजारोहण करियो। प्रदेशवासियों ने संबोधित करता मुख्यमंत्री कहो के भारत री डिजिटल क्रांति और UPI पूरी दुनिया में आपरो परचम लहरा रही है। वणा कहो के विकसित राजस्थान 2047 सारू राज्य सरकार बरोबर कोशिश कर रही है।
2: आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 में विकसित भारत का सपना साकार होगा। 2047 का

0: राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य होगा और जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा तब तिरंगा दुनिया के शिखर पर भारत के गौरव और सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर के लहरा रहा होगा।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जयपुरा लोकभवन में झंडारोहण करियो। ई मौके राज्यपाल नौजवानों संस्कार अनुशासन राष्ट्रहित ने ठावी प्राथमिकता देवता विकसित राजस्थान बनावण में भागीदारी निभावण री अरज करी। राजधानी जयपुर में जिला थर उजलसो चौगान स्टेडियम में आयो जलसा में सैनिक कल्याण महकमारा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ध्वजारोहण करियो। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ने सलामी दी। इनु पहला वना अमर जवान ज्योति माते पुष्प चक्र अर्पण करने शहीदा ने नमन करियो। जलसा में न्यारा न्यारा हल्का में ठावा काम करण वाला 37 प्रतिभावां रो सम्मानी करीजियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी विधानसभा में झंडारोहण करियो। साथ ही सगड़ा जिला मुख्यालय माथे ध्वज स्वतंत्रता दिवस जलसा पूर्ण मनाई जो। न्यारा न्यारा जिला मुख्यालय माथे व्या जलसा में न्यारा न्यारा मंत्री ध्वजारोहण करियो। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद वेरवा भीलवाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहरायो। कई जिला में जिला कलेक्टर ध्वजारोहण करियो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पार्टी प्रदेश दफ्तर में झंडारोहण करियो। वठई प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तिरंगो फहरायो। स्वतंत्रता दिवस रे मौके न्यारा न्यारा शैक्षणिक संस्थान में सांस्कृतिक कार्यक्रमारोही आयोजन करीजियो। मुख्यमंत्री आज बीकानेर में युवा संवाद विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में नौजवाना सामी बतल करी। ओ कार्यक्रम जिलारा जल विज्ञान और जल प्रबंधन संस्थान में वियो। ई कार्यक्रम में श्री शर्मा कहो कि युवा शक्ति रा विचार नवाचार कौशल उद्यमिता विकसित प्रदेश रा आधार है। वना कहो कि सरकार रो लगस प्रदेश रा नौजवाना ने रोजगार मांगण वाला नहीं बल्कि रोजगार देवण वाला बनावणो है। ई सारू राजस्थान युवा नीति समेत 36 नीतियां लाई जी है और स्टार्टअप और स्वरोजगार ने बढ़ावो दियो जावे। ई मौके मुख्यमंत्री बीकानेर ने 5 ई बसारी सौगाती दी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News राजस्थान माथे ही सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे ही समाचार सुन सको हो और ई बारा में फोटो और वीडियो ही देख सको हो। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह काले प्रदेश रा दौरा माथे रेवेला। ई दौरान वे प्रदेश आरु 12,112 करोड़ रुपया रा विकास कामारी सौगाती देवेला। ई कड़ी में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज उदयपुर पुगेला और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक पूग ने श्री शाह री अगुवाई करेला। एक रिपोर्ट।
2: आपरा प्रवास रे दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्तौड़गढ़ और अलवर जिला में 1,877 विकास कामारी नींव राखेला और लोकार्पण करेला। काश्तकारा ने सम्मान निधि री 667 करोड़ रुपयारी रकम डीबीटी करेला। साथ है ई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे तहत 152 करोड़ रुपयारी रकम सीधा बैंक खाता माए भेजी जाएला। श्री शाह 10,532 लोगा ने सरकारी नौकरी रा नियुक्ति पत्र सौंपेला। इनरे अलावा सरस डेरी रा 200 करोड़ रुपया रा नुवा प्लांट री नींव राखेला और वाको मेडिकल कॉलेज रो लोकार्पण करण रो ई कार्यक्रम है। श्री शाह काले निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ माए 442 कामारी नींव राखेला और 502 कामारो लोकार्पण करेला। ई मौके केंद्रीय मंत्री निम्बाहेड़ा रा अम्बेडकर राजकीय कॉलेज माए पहली रा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पुण्यतिथि माथे वारी मूर्त रो अनावरण करेला। समाचार कक्ष सु मैं डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: स्वतंत्रता दिवस माथे जयपुर में नारी शक्ति सम्मान उत्सव रो आयोजन करीजियो। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान री थीम माथे विया ई कार्यक्रम रो मकसद महिला मरा स्वास्थ्य हिफाजत और पोषण माथे जोर देवण हो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विविध हल्का में उत्कृष्ट काम करण वाली महिलाओं ने सम्मानित करिया। ई मौके वना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं और साथीना ने रक्षाबंधन रा निजराणाई दिया। कार्यक्रम में महिला स्वास्थ्यों जुड़ी पोथियां रो विमोचनी करी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: मैली धोती खुली है काया, करे जो मेहनत कदी लालच में ना आया। बे टूटी छपरी में भी होवे कोनी परेशान, अन्नदाता कहलावे है ए अपना किसान। किसान वाणी सुनबाड़ा सगला काश्तकार भाई बहना ने, श्रोतावा ने, चंचलरो ने भरियो मीठो मीठो राम राम। और सगला बड़ा बूढ़ा, दादा दादी ना

0: दादा नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली भुआ सब ने ढोकर जैसा। अदिति आपने भी घने मानू ढोक ऐसा। राम राम सा।
1: राम राम सा चंचल बहन और सुनबाड़ा सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
0: आज तो आपा दो लूठा जो है त्योहार मना रहा हाँ
1: जी सर।
0: भाई राजस्थान की धरती में तो तीज को महत्व है ही है और भारत भूमि के ताई जो आपा 80वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा हाँ
1: जी सर।
0: मन मन में एक बात आ रही है
1: आप कह दो सर
0: कि तीन रंग में देश समाया देश मेरा अतरंगा है। तीन रंग में देश समाया देश मेरा अतरंगा है। कोटि कोटि मैं करूं नमन उसे जिसका नाम तिरंगा है जिसका नाम तिरंगा है।
1: जी सा ये तीन रंगा का मायने आपने पूरी दुनिया समायोड़ी छे। एक आगे पिछोकड़े आपा देख जद आपा समृद्ध जो आपनो भारत छे वह आपने दिखे छे और इन और आगे बढ़ावा के लिए थोड़ो सो आपनो योगदान तो चाहिए जी।
0: बिल्कुल अदिति स्वतंत्रता दिवस आपा हर साल मनावा हाँ 15 अगस्त आवे जद भी और 26 जनवरी आवे जद भी वे तीन रंग को पुलाव भी आपा बनावा ला तीन रंग की मिठाइयाँ भी आ जावे ली तिरंगा की शी आपा जो है तिरंगो भी फहरा दिया ला बेशा कपड़ा भी पहन लिया ला खूब देशभक्ति गीत भी चला लिया ला और फिर जब 16 अगस्त आवे है या 27 जनवरी आवे है फिर सब कुछ शांत हो जावे है। तो ये विचारणीय बात है कि आपा जद हर्षोल्लास सो त्योहार मनावो चावा और मने लागे है ओ सेऊ बड़ो त्योहार है
1: जी सर
0: भारत भूमि के लिए और कोई भी देश को जो स्वतंत्रता दिवस है या स्वाधीनता दिवस है वो बहुत बड़ो त्योहार होवे है। तो अशी स्थिति में संकल्प लेवा अब का स्वतंत्रता दिवस कि आपा अपना देश हित की बात कराला जाति पाति ऊंच नीच धर्म कोई भी चीज़ हो बस सबसे ऊपर ने आपने देश रखनो है कि आप जो धर्म है जो पंथ है बे मानवा की चीज़ आप मानो सबको निजी विषय है लेकिन देश सबको सामूहिक विषय है और सामूहिक ही इको हमेशा जो है विकास होना चाहिए फिर कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए
1: जी सर। और सर सागे ही एक त्योहार भी है जी आप शुरुआत में बात करें
0: जी
1: तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगोर तो तीज आई छे नरासर आपने सागे त्योहार ना ले रही छे।
0: बिल्कुल और चूंकि त्योहारारी बात हो रही है और आपा स्वतंत्रतारी बात कर रहे हैं जद राजस्थान की बात हुए है वीरा की बात हुए है धरती का लाल की बात हुए है तो महाराणा प्रताप की बात हुए है बांका वीर चेतक री बात हुए है और माटी की महक की बात हुए है। तो अब अइया तो बातचीत आपा चाहे सारे समय ही करता रहवा पूरी टाइम बात कर सका लेकिन अगर यही बात संगीत में कहवा तो भी कोई एक अनोखो असर होवे है।
1: जी सा यानी कि अपना कार्यक्रम में 4 चांद लग जावेला
0: तो ए 4 चांद लगा दियो सा।
1: चालो सा

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सब यही डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: तो देखो आ जो माटी है, संवेद स्वरमे यो गीत आपा सुनिया, हिंदुस्तान री राजस्थान री माटी रो महत्व बताया। और देखो किसान वाणी कार्यक्रम में किसाना की बात होनी बहुत जरूरी
4: जी
3: है।
4: सा
3: और तो, प्रभु भाई आ गया है और पावना सु जानकारी आने कह दिया कि मैं दिलवा दे आपा सुना।
4: आपा सुना, चलो
5: किसान भाई और बिना कार्यक्रम में जानकारी देवा के वास्ते पधार चुका है रामलाल जी मीणा। आप रिटायर्ड अतिरिक्त निदेशक है कृषि और बस्सी जयपुर से अपना कार्यक्रम के मायने पधारिया है, और आज अपन जानकारी देवला संरक्षित खेती सुरक्षित खेती ई विषय पर। रामलाल जी मीणा साहब, आपको कार्यक्रम के मायने गुणो गुणो स्वागत है। राम राम सा।
6: राम राम सा।
5: और सांसों पहले आपसे वही जानना चाहूंगा कि संरक्षित खेती के वकीन है, और इसकी वर्तमान टाइम की अगर आप बात करें तो ये कहीं आ सकता है सर?
6: किसान भाइयों, संरक्षित खेती इस प्रकार की खेती है कि जिसमें परंपरागत खेती से अटके खेती की जाती है। जनसंख्या बढ़ रही है
5: जी,
6: प्राकृतिक साधन खनन और दूसरे कार्यों में जमीन काम आ रही है, जमीन कम पड़ती जा रही है, इसके साथ पानी की भी कमी पड़ रही है, और जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी बढ़ रही है, कब बरसात हो जाए, कब ओलावृष्टि हो जाए
5: जी,
6: कब आंधी और तूफान आ जाए, ऐसी स्थिति में किसान के लिए सुरक्षित और संरक्षित खेती की आवश्यकता होती है। इस संरक्षित खेती में इस प्रकार की खेती की जा सकती है कि किसान भाई प्राकृतिक खेती से अटके एक ढांचागत निर्माण करता है, और उस ढांचागत निर्माण के अंदर

0: जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जिनकी बहुत ज़्यादा लागत लगती है, बहुत ज़्यादा वो होती है, बाजार में मांग होती है, उस
1: जी
0: खेती को पहले प्राथमिकता से इस खेती में करते हैं। विशेष रूप से सब्जियाँ और जो फ्लावर्स है इसमें करते हैं। इसके अलावा वो ऐसी फसलें जिनके बाजार में अच्छे मूल्य मिलते हैं और उसकी आवश्यकता मांग भी ज़्यादा होती है, तो ऐसी फसलों को भी लाते हैं जिसमें विदेशी सब्जियां हैं। आपका शिमला मिर्च ले सकते हैं, जुकनी ले सकते हैं, इसके अलावा कलर कैप्सिकम को भी काम में लेते हैं। इस प्रकार की जो सब्जियां करते हैं उस संरक्षित खेती के रूप में काम में लेते हैं।
1: और आप एक संरक्षित खेती की संरचना की अगर बात करें तो कौन कौन सी संरचनावां है जी ये खेती के मायने काम में ली जाओगे साहब?
0: किसान भाइयों, जब बात करते हैं संरक्षित खेती की, तो जो संरचनाएं हैं वो आदमी के द्वारा बनाई जाती है। वो अब किसान अपनी लोकल आवश्यकता के अनुसार अपने खुद के संसाधनों के आधार पर उसका चयन कर जाता है।
1: जी
0: तो किसान ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल मल्चिंग करते हैं। इसके अलावा भी किसान भाई अपने स्वयं के साधनों से स्वदेशी संरचना का भी काम ले सकता है। ग्रीन हाउस में भी दो तरह के ग्रीन हाउस है, एक तो ऐसे ग्रीन हाउस जो कि बिल्कुल ऑटोमेटिक है, और एक है फैन फेड ग्रीन हाउस
1: जी
0: जिनमें जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जैसे फ्लावर, फ्लोरिकल्चर, वो थोड़े से ज़्यादा महंगे ग्रीन हाउस में काम लेते हैं। और जो सादा है, सब मिर्ची है, टमाटर है, उनमें कम लागत वाले ग्रीन हाउस काम में लेते हैं। इसके अलावा शेड नेट हाउस है।
1: जी
0: शेड नेट हाउस के अंदर एक छायादार शेड बनाया जाता है जिसमें लोहे के ढांचे के ऊपर और नेट हाउस, अलग अलग कलर के नेट होते हैं, और जैसी आवश्यकता है किसान को उस तरह के नेट से ढक के उसको खेती की जा सकती है। विशेष रूप से जैसे बरसात के समय उसमें नेट हाउस में बरसात का पानी रुकता नहीं है, लेकिन सर्दी और गर्मी इसके लिए नेट हाउस की उपयोगिता होती है। इसके अलावा दूसरी संरचनाएं जो विशेष तौर से सर्दियों में, लो टनल है, और लो टनल के अलावा वॉकिंग टनल है, ये संरचनाओं को भी अपने काम में ले सकते हैं।
1: जी और संरक्षित खेती के मायने अगर हम बात करें तो कौन कौन सी खेती है जो कि संरक्षित खेती के अंतर्गत करी जा सके है?
0: संरक्षित खेती के अंदर मैंने पहले भी अवगत कराया, और संरक्षित खेती के अंदर वो फसलें काम में ली जाती है जिनकी बाजार में बहुत अच्छी डिमांड हो,
1: जी
0: बाजार में अच्छे पैसे मिले किसान को, जलवायु से बिल्कुल सेंसिटिव हो, जलवायु के प्रति जो ऐसी फसलें जो जलवायु से प्रभावित तो होने हो, तो ऐसी फसलों में तो जिसमें कलर कैप्सिकम भी काम में ले सकते हैं, जुकनी है, विदेशी सब्जियां जैसे ब्रोकली है, लेट्यूस है, पार्सले है, सेलरी है, पोकचुई है, इस प्रकार की सब्जियां जो कि खुले वातावरण में नहीं होती है, उनको हम ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस में लगा के अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। आजकल तो नेट हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर जो जुकनी और आपका टमाटर, ऑफ सीजन के अंदर धनिया, इस तरह की फसलें लेके भी अपने उससे अच्छा पैसा कमाते हैं।
1: और कोई किसान भाई अगर एक खेती के अंतर्गत या फूलों की खेती अगर करना चाहे तो वह भी संभव हो गया सर?
0: बिल्कुल, फूलों की खेती के अंदर गुलाब, डच रोज होता है, अच्छा वो लगा रहे हैं और अच्छा फायदा भी ले रहे हैं। जो शादियों का समय है उसमें फूलों की खेती से अच्छा कमाते हैं कि खुले में बर्फ की जमा हो जाती है, सर्दी लगती है, इसके अंदर जो फूलों की गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो भी अच्छी होती है,
1: जी
0: क्योंकि इसके अंदर सीधा फ्रॉस्ट से प्रभावित नहीं होते, सर्दी से प्रभावित नहीं होते हैं, तो उससे फूलों की क्वालिटी अच्छी होती है। और उनको आप किसी ग्रीन हाउस में रख कर और डायरेक्ट कोल्ड चेन से जोड़कर उसको बाहर भी भेजा जा सकता है। तो इस तरह के ग्रीन हाउस और संरक्षित खेती के अंदर फूलों की खेती भी अच्छी तरह से ली जाती है।
1: जी और अब आप बात करें अगर कोई किसान भाई जो संरक्षित खेती या सुरक्षित खेती की तरफ वो बढ़े या वो खेती कर रहे हैं तो भाई ये खेती का जो घटका की बात करें तो कौन कौन सा मुख्य मुख्य जगह घटक है किसान भाई ने अपनाना चाहिए जी?
0: किसान भाइयों, हम हमेशा संरक्षित खेती शब्द आता है तो ये सोचते हैं कि केवल जो एक ग्रीन हाउस और शेड नेट है यही संरचना है, इसी में खेती करते, लेकिन विशेष रूप से कोई भी संरक्षित खेती हो या दूसरी खेती हो, उसमें जो विशेष घटक है जिनमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा रहती है, उनका विशेष योगदान है।
1: जी
0: विशेष रूप से तो एक रिज बेड, रिज बेड का मतलब उठी हुई क्यारी, और वो राजस्थान और पूरे देश के लिए सभी खेती, चाहे ओपन में हो, चाहे ग्रीन हाउस में हो, शेड नेट में हो, उसमें रिज बेड पे होती है। तो उससे क्या है कि एक तो बीज कम लगता है, पानी की मात्रा कम लगती है, और उसके अंदर क्वालिटी भी ज्यादा होती है, उत्पादन भी ज्यादा होता है। दूसरा होता है कि रिज बेड के अलावा अगला कंपोनेंट है जो है कि ड्रिप इरिगेशन।
1: जी
0: ड्रिप इरिगेशन, तो रिज बड़ी हुई होती है तो ड्रिप इरिगेशन उस पर लगाकर उसे फर्टिगेशन दे सकते हैं, जब पौधे को आवश्यकता है उसी टाइम पानी दिया जाता है, पानी की बचत होती है, खरपतवार भी कम होती है, तो ड्रिप इरिगेशन भी एक संरक्षित खेती का मुख्य घटक है।
1: जी
0: इसके आगे यदि ये दोनों चीज अपनाते हैं, रिज बेड

0: है जो प्लास्टिक मल्चिंग का वो ऊपर की साइड रखा जाता है, जो ब्लैक कलर है वो प्लास्टिक मल्चिंग का नीचे रखा जाता है, बेड के ऊपर लगाई जाती है। तो बेड बढ़ा देते हैं, बेड के बाद में ड्रिप इरिगेशन की लेटर लगाते हैं, और लेटर लगाने के बाद में उसके ऊपर मल्चिंग प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं, और मल्चिंग में भी एक छेद होते हैं, जैसी अपनी फसल की दूरी है
1: जी
0: उसके हिसाब से उस छेद निकालते हैं, और उस छेद निकालते हैं तो केवल छेद होता है उसी जगह खुला ओपन में रहता है, बाकी चारों तरफ से उसको मिट्टी से ढक देते हैं। उसकी वजह से जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो कम होता है, और जो खरपतवार होती है
1: जी
0: उस खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। और खरपतवार के साथ साथ में जैसे सर्दियों के अंदर जो जमीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है मल्चिंग की वजह से, अन्यथा इसमें फ्रोस्ट किए जाते हैं तो फ्रोस्ट कम होता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरा रूट जो डार्क जोन होता है, तो मल्चिंग के नीचे डार्क जोन होता है, उसकी रूट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और जो प्लास्टिक मल्चिंग लगाते हैं तो उसकी वजह से जो इंसेक्ट है और पेस्ट है वो भी कम लगते हैं। तो
1: जी
0: इस प्रकार से मल्चिंग का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा और भी दूसरे जो कंपोनेंट है जिनके अंदर मल्चिंग का उपयोग होता है और जो दूसरी चीज है उनका भी उपयोग होता है, एक लोटनल होती है। लोटनल विशेष रूप से राजस्थान में नवंबर से लेकर और आपका फरवरी तक काम में ली जाते हैं। लोटनल जो ओपन फील्ड है उसके अंदर जो आपका मिर्च है, टमाटर है, या जो फ्रोस्ट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव फसलें हैं उनको काम में ली जाता है। इसमें एक प्लास्टिक शीट होती है जो 25-30 माइक्रोन की होती है, और उसको बांस की या लोहे की छड़ियां लगाकर उसको कवर किया जाता है फसल को।
1: जी
0: इसमें विशेष तौर से जो कुकुरबिट्स होते हैं जिसमें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, ये फसलें अगली फसल लेने के लिए उसमें लगा देते हैं और उसको कवर कर देते हैं। उसके बाद में जब भी फरवरी का महीना आता है, मार्च का महीना है, तो वो लोटरनल हटा दी जाती है। तो उससे क्या है उसकी ग्रोथ होती है, और जो अगेती फसल है उसका बाजार भी अच्छा मिलता है, और उससे क्वालिटी भी अच्छी होती है, दूसरा उसमें फसल भी बहुत ज़्यादा अच्छी, पैदावार भी अच्छी होती है। तो लोटनल का यूज होता है। एक कंपोनेंट है वॉकिंग टनल, जो इसका नाम से ही है, वाक वाक यानी घूमना।
1: जी
0: तो ऐसी टनल, ऐसी सुरंग जिसके अंदर आदमी घूम सकता है, तो उसमें 8 से 10 बेड बढ़ाई जा सकती है। इसकी लंबाई खेत की उपलब्धता के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई करीबन 10 से 12 मीटर
1: जी
0: चौड़ाई रहती है और 4 मीटर ऊंचाई तक होती है। इसको वॉकिंग टनल कहते हैं, जिसमें वॉक किया जा सकता है। इस तरह की खेती भी जो आपका फ्लोवरी कल्चर है, या आपका बेल वाला टमाटर है, या तरबूज है, खरबूज है, चुकनी है, ब्रोकली है, कलर कैप्सिकम है, इन फसलों के लिए एक कंपोनेंट है सुरक्षित खेती में जिसका किसान आमतौर से यूज करता है, नेट हाउस।
1: जी
0: नेट हाउस ज़्यादातर गर्मियों के अंदर जो फसल होती है उसमें क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो देते हैं, छाया हो जाती है, और छाया के हिसाब से नेट होता है। इसके अलग अलग वो माइक्रोन का होता है, जिसमें किसी में 90%, किसी में 60%, किसी में 70%, जैसे भी किसान की आवश्यकता है उस तरह का नेट काम में लिया जाता है। उसमें खीरा जैसी फसल है, या आपका स्वीट कॉर्न है, या तुरई है,
1: जी
0: इस तरह की फसलें आप लगा सकते हैं, चेरी टमाटर है, ये भी काम में ले सकते हैं। तो इस तरह के नेट हाउस होते हैं, और एक होता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर साल भर के अंदर फसलें ली जाती है, विशेष तौर से गर्मी में थोड़ी सी ग्रीन हाउस के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या पंखा और फैन की आवश्यकता पड़ती है कूलिंग करने के लिए।
1: जी
0: बाकी की ग्रीन हाउस में सर्दी और बरसात में, बरसात का पानी सीधा ग्रीन हाउस के अंदर नहीं जाता है, और सर्दी के अंदर भी वातावरण टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो विशेष तौर से सर्दी और बरसात के लिए ग्रीन हाउस बहुत ही ऐसा संरचना है जिसके अंदर किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकते हैं। गर्मियों के अंदर जो नेट हाउस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ली जा सकती है।
1: बिल्कुल साहब, आप जहाँ ग्रीन हाउस की बात बता रहे हो कि भाई किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सके, तो ग्रीन हाउस का मायने खेती करना या ग्रीन हाउस की जगह संरक्षित खेती है वह सुरक्षित खेती की प्रकार से उसका एक पर थोड़ा सो किसान भाई ने
0: किसान
1: बताओ।
0: भाइयों, आज की एक आम बोलचाल की भाषा में किसान, कई लोग कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस के अंदर खीरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या कीटनाशक का उपयोग होता है, लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप शुरू से ही अपनी फसल को इनसे बचा के रखोगे, तो क्योंकि जब वातावरण बिल्कुल सुरक्षित वातावरण फसल के लिए है
1: जी
0: तो कीड़ों के लिए भी सुरक्षित वातावरण है, लेकिन आप यदि कीड़ों से शुरू से में बचाव करोगे तो उसमें फिर संभावना कम होगी कि इसमें कीड़े लगे, क्योंकि उसमें फसल को चारों तरफ से बाहर का कीड़ा आक्रमण नहीं कर सकता। तो विशेष तौर से शुरुआत में ही जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है उसके अंदर कीड़ा पनप नहीं पाए। तो विशेष तौर से किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि जो भी किसान भाई ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस या लोटन और मल्चिंग में करें, तो वो शुरुआत से ही प्रोफाइलेमेटिक स्प्रे जिसको कहते हैं कि

0: उपाय करे कि वो उसमें कीड़ा या बीमारी ही नहीं पनपने दे, तो फिर उसमें कम से कम पेस्टिसाइड और दवाओं की जरूरत पड़ेगी। एक बार इसमें यदि कीड़ा और बीमारी पनप जाता है तो फिर उसको नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो
1: जी
0: ऐसी स्थिति में सुरक्षित इसलिए है कि यदि आपने इसमें कीड़ा और नहीं पनपने नहीं दिया जाए तो वो सुरक्षित होगा और उसमें कम से कम पेस्टिसाइड का यूज होगा। इसलिए इसको सुरक्षित खेती और सुरक्षित खेती बोला जाता है। लेकिन इसमें विशेष तौर से किसान को 24 घंटे और उसमें समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें किसी तरह की शिथिलता की गुंजाइश नहीं रहती है।
1: रामलाल जी मीणा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक बस्सी जयपुर से आप कार्यक्रम का मैंने पधारिया और आज माका किसान भाई और बड़ा ने संरक्षित खेती सुरक्षित खेती ये महत्व विषय पर बहुत ही चौखी जानकारी दी। एक वास्ता आपको मोकड़ो मोकड़ो धन्यवाद सा।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: बहुत ही लाभकारी जानकारी, संरक्षित खेती, सुरक्षित खेती, और अदिति आज का जमाना की जरूरत भी है।
5: जी सर, और मांग है, जरूरत है, तो ये तो आपने अपनानी ही चाहिए।
4: बिल्कुल,
5: और प्रभु भाई इतनी बढ़िया जानकारी आप दिलाया, तो आपको भी घनो घनो धन्यवाद सर।
4: और कोरो धन्यवाद आपा देवा को नहीं। तीज त्योहारा की भी बात हो रही है, तो जद आपा राष्ट्रीय त्योहार को गीत सुनया, हाँ तो आज जो लुगाया को बढ़िया लूटो सो त्योहार है तीज, एक लहरियो भी सुना सा।
5: चालो सा आपकी फरमाइश तुरंत पूरी करूं।

0: तो ये गीत रे सागे ही कार्यक्रम किसान वाणी रो टेम पूरो हो रहे है साहब
1: जी।
0: तो चाला और करा
1: राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय शाम के 7:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों का अन्य प्रोग्राम खेती बाड़ी।

0: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
4: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
5: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
6: खेतीबाड़ी कार्यक्रम की बाट उड़ीकता सगड़ा श्रोतावा ने किसान भाई बहना ने चंचलो नहीं भरियो मीठो मीठो हरियो भरियो सु राम राम और सगड़ा बड़ा बूढ़ा ने एक बार ओ जूं ढोगरा जैसा। आदिति आपने भी एक बार ओ जूं घने मानू राम राम सा।
7: राम राम चंचल बहन और सुनबाड़ा सगड़ा श्रोतावा ने आदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
6: देखो आप बात कर रहा है स्वतंत्रता दिवस री
7: जी,
6: तो मोखली मोखली बधाया है ही हर बार है जब भी आप बोला, और हरियाली तीजरी भी मैंने पता है कि आज आपने जो बैना है काश्तकार साथी जो है अपना सारा मोटियार तो आज घेवड़ लियाबा में व्यस्त है
7: जी सर,
6: और जत्ती भी लुगाया है मैं तो आपने मेहंदीर लहरी और गीत और झूला झूला का गीत और सीखण सब में जो है व्यस्त है
7: जी।
6: पर मैंने विश्वास है कि अति व्यस्तता में भी आपनो कार्यक्रम तो बस
7: सुन ही रहा होला,
6: क्योंकि यो सिर्फ कार्यक्रम को नहीं आ एक जीवन की पद्धति है, क्योंकि काश्तकार भाइयों के लिए नवाचार खेती का जुड़ेड़ा रहवे बे यो बहुत जरूरी है, और अपना कार्यक्रम ने तो बस सिर्फ सुना ही को नहीं गुणे भी है
7: जी सर। सही कह रहा छो, और तीज त्योहारा तो मनावा छा लेकिन साथ में अपना जो रोजमर्रा का काम छे अपना खेती किसानी से जुड़िया वह आपा कहीं छोड़ सका चा, और वा में नवाचार अपनावो वह तो आपा भूल ही नहीं सका। नई नई जो तकनीक आ रही छे, नए जो जो विकास हो रहा छे, ये सब अपने लिए एक वरदान छे, और इन्हें आपने अपनानो छे और सकारात्मक रूप से अपनानो छे जिससे कि आपनो भविष्य सुंदर और सुदृढ़ हो पावे।
6: बिल्कुल अदिति, और जब नवाचारा की बात आवे है तो आजकल आपा जैविक खेती की तरफ जा बुचावा
7: जी,
6: रसायन आसु दूरी बना बुचावा। और जब जैविक खेती की बात आवे तो आपा कह सका हाँ कि जैविक खेती से समृद्धि, जैविक खेती से राहत, पशु मृदा मानव हो स्वस्थ, घटे रसायन की लागत, प्रकृति का प्रकृति से लेकर प्रकृति को ही दे देना, जैविक खेती तो है भाई कम लागत और अधिक बचत
7: जी।
6: तो आपा संरक्षित सुरक्षित प्राकृतिक खेती की तरफ जब चाला हाँ, तो ना सिर्फ आपा खेती बाड़ी ने चोखू करा हाँ, माटी की सेहत के प्रति, पर्यावरण की सेहत के प्रति, अपना ढांडा ढोर जो वे चारों दाणों खावे बाकी सेहत के प्रति, और जो मिनख भी उत्पादन ने खावे है बाकी सेहत के प्रति एक जिम्मेदारी निभावा हाँ, एक संकल्प है जिन्हें आपा साधा हाँ
7: जी सा। और जैविक खेती आपने अपनानो छे और या आपने सीख भी लेनी छे कि इसे ही आपनो जो पार छे आपा पापा वाला और आपनी आबाड़ी जो पीढ़ी छे वाने भी आपा एक सपनो संजोर दे पावाला कि ये जो जैविक खेती छे इन्हें ही आपने अपनानो छे, इसे ही आपनी पार पड़ेली।
6: बिल्कुल, क्योंकि रसायन जो है वे तो अंतिम विकल्प होना चाहिए
7: जी,
6: और विकल्प जीवन में बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अगर कार्यक्रम की बात करा कि जी आपा बाता चीता कर रहा जानकारी दे रहा
7: जी सर,
6: और फिर गीत संगीत को एक विकल्प रह लो जो कि मनोरंजन की तरफ आपा ने ले जाओ, बी के पाचे फिर आपा कोई जानकारी की बात कर ले शा, तो ये जो तालमेल है यो विकल्प पास हुई आवे है
7: जी। और तालमेल तो कार्यक्रम में बिठा रहा आपा ने चालनो छे और चालनो चाहे जे भी,
6: तो फिर अब तालमेल बिठावा, विज्ञापन भी सुनाना है और गीत भी,
7: तो चालो सा हमारे साथ है विज्ञापन मनोरंजन और जानकारी सबको पिटारो भेड़ो कर लाई छू, आपने एक एक कर खोलती जाऊंगी।
6: बिल्कुल सा,
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
1: भाई बहुत ही बढ़िया गीत अदिति आप ले रहा है। और सावन आयो है, तीज त्योहार आया है, लहरियारी रंगत भी है
2: जी।
1: और ई रंगत रे सागे सागे जो जानकार यहाँ है वह भी अगर एक रंग आपने बाता में मिल जावे तो घणो चोखो है लो। और जानकारी की जठे तक बात है
2: तो आपा जानकारी लेवा खरीफ फसला में सूक्ष्म पोषक तत्व की उपयोगिता। और जानकारी देवा खातिर अपने सागे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शालिनी शर्मा, आप सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी कृषि रसायन कृषि विभाग सीकर सु आप पधार्या। शालिनी जी आपको कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत। राम राम सा।
1: राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: बिल्कुल रामा श्यामा होगी है। और जद आपा जो नया नया अधिकारी आवे है, मैं अहिया बात को नहीं करी कि नित नया भात भात का आवे, जो छोटी छोटी उम्र का अधिकारी बनर आवे है और जब बात करे है तो एक मन में उम्मीद जागे कि नई पीढ़ी जो है बा खेती ने संरक्षित कर ले वाली।
2: जी सा।
1: तो बहुत ही नई पीढ़ी कहवा आपा और अपना जो जी का आज का विशेषज्ञ है बासु नया नया ज्ञान की आपा बात कर शा। से वो पहले सवाल आपा खरीफ की फसलारी बात कर रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वारी बात कर रहे हैं, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होवे काई हैं?
3: पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वे आवश्यक खनिज तत्व है जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा जैसे 1 PPM से भी कम में आवश्यकता होती है। ये पौधों के विकास, एंजाइम क्रिया, प्रकाश संश्लेषण और अच्छी पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
1: जी, और कौन कौन सा हो वह पोषक तत्व?
3: ये 8 प्रकार के हैं जैसे लोहा, मैंगनीज, जस्ता, तांबा, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल इसमें है।
1: जी, अच्छा शालिनी जी आप सूक्ष्म पोषक तत्वारी बात कर रहे हैं और आपा कहवा कि आ की जरूरत पड़े है, कम पड़े है। अब जरूरत तो जद पड़े ली ना, जद खत्म हो जा वाला माटी सो, ए अगर माटी में से खत्म हो रहा है, कम हो रहा है तो बी को कई कारण है?
3: प्रति हेक्टेयर अधिक उपज हेतु लगातार कुछ विशेष तत्वों के देने से सूक्ष्म पोषक तत्व ही नहीं बल्कि प्राथमिक पोषक तत्वों की मृदा में कमी देखी गई है जिनके कारण है। पहला, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की ओर किसानों का झुकाव जिससे साल दर साल मृदा स्वास्थ्य गिरता गया। दूसरा, हरित क्रांति के उपरांत सूक्ष्म पोषक तत्व रहित उर्वरकों का उपयोग। तीसरा, बंजर भूमि जिसमें सामान्यतः पोषक तत्वों की कमी होती है उसके सुधार हेतु सूक्ष्म पोषक तत्वों की वरीयता नगण्य है। चौथा, अनियमित रूप से सघन कृषि प्रणाली एवं बहुमंजिला खेती। पांचवा, किसी विशेष क्षेत्रफल में एक ही फसल को लगातार उगाना जिससे मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के बीच असंतुलन पैदा हो जाता है। और छठा, किसानों का मृदा के प्रति फसल के अनुपात में जागरूक न होना।
2: जी डॉक्टर साहब, अगर थे जिया जिंक को नाम लिया तो जिंक की कई मोटी भूमिका निभावे छे, और अगर इकी कमी हो जावे तो इकी पूर्ति कहीं करा आपा?
3: जिंक पौधों द्वारा जल अवशोषण में सहायक होता है, यह प्रोटीन व हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक होता है। जिंक क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। जिंक की कमी से पौधों की लंबाई घटने के साथ साथ पौधों की वृद्धि भी घट जाती है। पत्तियां छोटी और सिकुड़ जाती है, पत्ती का रंग पीला हो जाता है जबकि शिराएं हरी रहती है, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसकी कमी से मक्का की पत्तियों का आधा भाग सफ़ेद हो जाता है। जिंक की पूर्ति हेतु बुवाई से पूर्व 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट को भूमि में मिलावे। खड़ी फसल में 0.5% जिंक सल्फेट के घोल का छिड़काव 3 बार 7 से 10 दिन के अंतराल में करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपा जद अगर मिनखा की बात करा कि आयरन की कमी होगी तो आयरन की दवाइयाँ भी दे देवे और कहवे कि लोहा की कढ़ाई में खानो बनार खाओ, पालक खा लियो, हरी सब्जियाँ खा लियो, अगर धरती में लोहा की कमी हो जावे तो फिर कहीं करना चाहिए जैसा?
3: लोहा की उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है तथा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण में योगदान के साथ साथ क्लोरोफिल का निर्माण करता है जबकि यह क्लोरोफिल का अवयव नहीं है। इसकी कमी से नई पत्तियों में शिराओं के बीच का भाग पीला हो जाता है। अधिक कमी पर पत्तियां हल्की सफ़ेद हो जाती है। मुख्य शिरा हरे रंग की रहती है। नींबू में पत्तियां व टहनियां सूख जाती है तथा फल गिर जाते हैं। लोह तत्व की कमी वाली मृदाओं में फेरस सल्फेट 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई पूर्व प्रयोग करें। खड़ी फसल में 0.5% फेरस सल्फेट का छिड़काव करें।
2: जी शालिनी जी, मैगनीज की काई भूमिका हुए छे यार, ई की पूर्ति का उपाय भी बता दियो सा।
3: मैग्नीज क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है तथा प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट में उपापचय में सहायक होता है। नाइट्रेट को अमोनिया में अपचयन करने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है। इसकी कमी से पत्तियों की शिराओं में हरिमाहीनता धब्बे उत्पन्न होने लगते हैं। धान्य फसलों में उत्तक गलन रोग पैदा होने लगता है। जई में भूरी चित्ती, चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग, मटर में पर्ण चित्ती तथा गन्ने में अंगमारी रोग मैग्नीज की कमी से हो जाते हैं। मैग्नीज की कमी की पूर्ति हेतु मैग्नीज सल्फेट 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई पूर्व भूमि में मिलावे। खड़ी फसल में 0.5% मैग्नीज सल्फेट का छिड़काव करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तांबा की कमी हो जावे तो कहीं पूर्ति कराला, क्यों जरूरी है कि तांबा की कमी नहीं होनी देनी चाहिए?
3: कॉपर तत्व प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में सहायक होता है। पौधे में यह फफूंद जनित बीमारियों को रोकता है। यह क्लोरोफिल निर्माण व आयरन के उपयोग में सहायक होता है। इसकी कमी से नए कोपलों में क्लोरोसिस हो जाता है। पत्तियों की शिराओं की चोटियां छोटी और मुड़ी हुई हल्की हरी पीली हो जाती है। पत्तियों में स्थायी सूखापन आ जाता है। और कॉपर की पूर्ति हेतु बुवाई पूर्व 10 किलो

0: किलोग्राम कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलावे। खड़ी फसल में 0.5 से 1% कॉपर सल्फेट के घोल का छिड़काव करें।
1: जी शालिनी जी, अगर बात करें बोरोन तत्व की, तो इकी कई प्रकार सु आवश्यकता आपने पड़े है, और इकी कमी की पूर्ति अगर करनी हो वेकर से बाहर बनाने, तो वह कहियां करें?
0: बोरोन पौधों में नर जननांग के बनने व उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह क्षार के निर्माण में सहायक है। बोरोन जड़ों की वृद्धि के प्रेरित करता है एवं एंजाइम के बनने बीज एवं कोशिक भित्ति के निर्माण तथा शर्करा के परिवहन के लिए आवश्यक है। बोरोन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम वृद्धि बिंदुओं और नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां मोटी और मुड़ी हुई चाबुक के समान हो जाती है। इसकी कमी के लक्षण फूल गोभी, टमाटर, तंबाकू व अंगूर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकते हैं। बोरोन की पूर्ति हेतु बोरोन का 20% या फिर 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सूखी मिट्टी में सामान्य रूप से मिलावे अथवा सिंचाई के पानी के साथ देवे। खड़ी फसल में बोरोन 20% का 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सूक्ष्म पोषक तत्व है जिको नाम थोड़ा सो अटपटो से लागे, सुड़वान चोखो भी लागे, मोलिब्डेनम। इको काई रोल रहे है और की तरीका से इकी कमी आपने पूरी करनी चाहिए?
0: मॉलिब्डेनम तत्व सहजीवी व असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है तथा नाइट्रोजन उपापचय में सहभागिता अदा करता है। यह नाइट्रेट अपचयन के लिए आवश्यक होता है। यह फास्फोरस उपापचय तथा शर्करा व विटामिन सी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियां इसकी कमी से कमजोर हो जाती है। इसकी कमी से फूल गोभी में विप्टेल नामक बीमारी तथा नींबू में पीलापन का रोग हो जाता है। इसकी पूर्ति हेतु अमोनियम मोलिब्डेट 600 ग्राम से 1200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाते हैं। खड़ी फसल में 0.5 से 1 ग्राम अमोनियम मोलिब्डेट प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तियों पर छिड़काव करें।
1: शालिनी जी, क्लोरीन की उपयोगिता बताओ सा, सागे ही अगर इसकी कमी हो जावे तो करसा बाहर बैंड कहियां पिछाड़े है, यानी कि लक्षण भी बताओ, और अगर पूर्ति आपने करनी चाहे तो उनका उपाय साथ में बताता चालो।
0: प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरीन आवश्यक है तथा यह ऑक्सीजन के प्रतिस्थापन के लिए कार्य करती है। यह कोशिकाओं में ऑस्मोटिक दबाव बढ़ाती है जिससे ऊतकों में जल का अंतर्गमन बढ़ता है। क्लोरीन से पौधों को विभिन्न फफूंदग्रस्त बीमारियों से बचाता है, जैसे गेहूं की टेकोल बीमारी। क्लोरीन की कमी से नई पत्तियों में क्लोरोसिस होता है, साथ ही पौधों में मुरझाए जैसे दिखाई देते हैं। क्लोरीन की अधिक कमी होने पर फल नहीं बनते। फसल और मदा में क्लोरीन की पूर्ति मुख्य रूप से क्लोराइड युक्त उर्वरक जैसे पोटेशियम क्लोराइड, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं, इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड के उपयोग द्वारा भी इसकी पूर्ति की जाती है। हालांकि अधिकांश मिट्टी और सिंचाई के पानी में क्लोरीन प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए इसकी कमी कम ही होती है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी फसलोत्पादन की बात होवे है, सूक्ष्म तत्व की बात होवे, तो एक निकिल नाम को भी सूक्ष्म तत्व होवे है, और ई की कमी को काई तो असर पड़े है और की तरीका से इन्हें आप पूरा कर सका, ये बताओ साहब।
0: निकल यूरिया एंजाइम के लिए आवश्यक है, जो कि यूरिया का अपघटन करके नाइट्रोजन के पौधों के लिए उपयोगी स्वरूप प्रदान करता है। निकल पौधों में लोह तत्व के अवशोषण में सहायक है। यह बीजों के अंकुरण एवं बढ़वार में भी उपयोगी है। पत्तियों का आकार में छोटा रह जाना निकल की कमी का प्राथमिक लक्षण है। नई पत्तियां जिनमें निकल की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, उन पत्तियों में लाल रंग के वर्णक में दिखाई पड़ते हैं। समय के साथ निकल की कमी वाली पत्तियां छोटे आकार और अधिक गहरे रंग की व मोटी हो जाती है। निकल की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यकता होने पर विशेषज्ञों की सलाह से निकल युक्त अकार्बनिक या चिलेटेड उर्वरक का सीमित प्रयोग करें। कमी के लक्षण दिखने पर निकल सल्फेट को बहुत कम या सुरक्षित घोल को पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी जी सर, देखो चंचल बहन, आप माँ अपनी तरफ से सारा प्रयास कराचा कर सा बाहर बहना के लिए, पर सरकार भी आपने लिए कई प्रकार से सकारात्मक कदम उठा रखी चाहे, कई सारी योजनावा भी चलाई रखी चाहे, तो आप डॉक्टर साहब से यही जानवो चावला कि कौन सी अशी योजनावा छे या कौन सा अच्छा प्रयास छे जो सरकार द्वारा वहाँ के लिए कराया जा रहा है।
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, यह योजना किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की सही जानकारी देती है तथा उनके प्रति जागरूकता के लिए रामबाण योजना साबित हो रही है। दूसरा, समय समय पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु सकारात्मक प्रयास किए गए जिसके वांछित परिणाम मिले। तीसरा, एक देश एक खाद योजना जिसमें किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद उचित दर पर उपलब्धता के साथ साथ भ्रामकता को नगण्य करने का प्रयास किया गया है। चौथा, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों पर सब्सिडी जैसे प्रावधान दिए गए हैं ताकि अन्नदाताओं की पहुंच से कोई भी विकल्प दूर ना हो सके। पांचवा, समय समय पर विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे अन्नदाताओं को सही जानकारी मिलती रहे।
1: जानकारी की जित बात आवे है डॉक्टर साहब, तो सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच कहीं करावा कि आपने जानकारी मिल जाए, एक बार बताओ।
0: मृदा एवं पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन आदि की जांच मुख्यतः प्रयोगशाला में की जाती है। मिट्टी के नमूनों को पहले सुखाकर और छानकर तैयार किया जाता है। इसके बाद विभिन्न रासायनिक विधियों द्वारा पोषक तत्वों को निकालकर उनकी मात्रा का निर्धारण किया जाता है। पौधों में भी पत्तियां या अन्य उपयुक्त भागों का नमूना लेकर उनका विश्लेषण किया जाता है। इस तरह हमें पता चलता है कि मिट्टी या पौधों में किस पोषक तत्व की कमी है या वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
1: जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी आप दिया डॉक्टर शालिनी शर्मा, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी कृषि रसायन कृषि विभाग सीकर से आया जी। खरीफ फसल में सूक्ष्म पोषक तत्व की उपयोगिता, आप लोग घने मानो धन्यवाद साहब
2: जी। और धन्यवाद री भेट स्वरूप सुनाए मीठा सो लोकगीत।
1: बिल्कुल साहब।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: तो लहरियारा 900 रुपया तो कमाना पड़े
3: जी सर।
2: और आज की दिहाड़ी तो आपने पूरी होगी, तो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनावा देवा, तीजरी
3: घनी घनी बधाई देवा।
2: बिल्कुल। और अब चालबा को टेम पूरो हो रहो है, तो आप श्रोताओं ने कहवा कि माने भी इजाजत दे दियो
3: जी। और देव अदिति ने
2: और चंचल ने आज्ञा
3: चाला और करा
2: राम राम, राम सा।
4: खेती बाड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे खेती बाड़ी कार्यक्रम। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: शाम के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित एक विशेष समाचार तरंग।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर की क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत है विशेष समाचार तरंग। स्वीकार कीजिए ऋतिका गुप्ता का अभिवादन।

वतन की मिट्टी की खुशबू से, तिरंगे की आन से, वीरों की बलिदान से और करोड़ों देशवासियों के अरमान से समूचे वातावरण में है देशभक्ति के रंग। हर ओर लहरा रहा है तिरंगे का गर्व। आज है राष्ट्रीय पर्व 80वां स्वतंत्रता दिवस। आजादी के इस महापर्व को प्रदेश भर में राष्ट्रभक्ति, गर्व और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार के समारोह की खास बात रही पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन।

0: स्वाधीनता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में आयोजित किया गया। इस उपलक्ष में पूरे शहर को तिरंगे की थीम पर सजाया गया। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम पर हुए इस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। राज्य स्तरीय समारोह पर सुनिए हमारे बीकानेर केंद्र की रिपोर्ट।
1: स्थानीय डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण के साथ राजस्थान पुलिस बल, RSE, बॉर्डर होमगार्ड, NCC आदि

0: क्योंकि मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भारी संख्या में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं तथा नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा,
1: स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं मर्दरा की इस वीर भूमि बीकानेर से राजस्थान के सभी नागरिकों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उन अमर बलिदानियों को नमन करता हूं जिनके त्याग तपस्या और संघर्ष के कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। मैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य बलों के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की सीमाओं और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस शौर्य और समर्पण के साथ सीमा पर डटे देश के वीर सैनिकों अर्धसैनिक बलों तथा सभी रक्षा कर्मियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं।
0: बैंड दलों ने भी देशभक्ति एवं उत्साह से भरपूर धुनों का प्रदर्शन करते हुए परेड का जोश बढ़ाया।

0: मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया। इस प्रकार बीकानेर में आयोजित स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। बीकानेर से रेवंत राम लेगा, संजय गौड़, पुरुषोत्तम और सुरेश गहलोत के साथ मैं महेश उपाध्याय।
1: आइए अब आपको लिए चलते हैं उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम, जहां जिला स्तरीय समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झंडारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री खराड़ी ने युवाओं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आने का आह्वान किया।
2: उदयपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जनजाति और क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग श्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया।
3: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान।
2: परेड के दौरान एनसीसी के तीनों विंग्स, स्काउट गाइड और पुलिस जवानों द्वारा पुलिस बैंड की मधुर धुनों पर मार्च पास्ट किया गया और सलामी दी गई।

महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्री दीपेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया। स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों का सम्मान करते हुए प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में समारोह के मुख बधिर विद्यालय के बच्चों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन किया गया।

मुख्य आकर्षण जेल ऑर्केस्ट्रा बंदी बैंड द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रगीत की प्रस्तुति रही। स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा किए गए नृत्य प्रदर्शन ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया।

0: इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आकाशवाणी उदयपुर से मैं गजेंद्र सिंह राठौड़।
1: सूर्यनगरी जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह उम्मेद स्टेडियम में रखा गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में विद्यार्थियों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों की उत्साह के साथ भागीदारी रही। सुनिए जोधपुर केंद्र की रिपोर्ट।
2: मुख्य समारोह स्थानीय उम्मेद स्टेडियम में राजस्थान सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। राष्ट्रगीत, ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के पश्चात परेड कमांडर नितेश कंवर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया।
3: सलामी मंच से पधारे।
4: स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण को हाजिर है।
2: इसके बाद परेड कमांडर ने सलामी मंच के सामने से मार्च पास्ट की सूचना दी और पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स की विभिन्न टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर ने माननीय राज्यपाल के संदेश का पाठ किया।
5: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको 80वें स्वाधीनता दिवस की असीम शुभकामनाएं। आज पूरा देश सम्मान और गौरव के साथ ये राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। आइए इस पावन अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे और एक समृद्ध, सशक्त एवं सुदृढ़ राजस्थान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2: विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,
6: मित्रों, हमें ऐसा जोधपुर बनाना है, हमें ऐसा राजस्थान बनाना है जहां विरासत, अतीत की स्मृति वर्ण हो बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की शक्ति बने। आइए हम सब मिलकर स्वतंत्रता की विरासत को विकास की शक्ति बनाएं।
2: उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिले के विभिन्न लोगों को इस पुनीत अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशंसा पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर आकाशवाणी जोधपुर की टीम ने कुछ लोगों से बात की।
7: मैं सरिता चौधरी, जिला प्रशासन की तरफ से हमको नव भारत उल्लास कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत किया गया। मैं राम सनय विश्नोई, राजस्थान पुलिस जोधपुर ग्रामीण से हूँ और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से महिला आत्म सुरक्षा का कोर्स चलता रहता है, तो उसमें हम हमारे पुलिस की तरफ से महिलाओं को, बच्चियों को और फ्री के अंदर प्रशिक्षण देते हैं। जो महिलाएं बाहर जाती है तो उनके साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं होती रहती है आए दिन, तो उसके लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम चलता रहता है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वजह से आज मेरे को या एचएडी में सम्मानित किया।
2: इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन हुआ। इस प्रकार 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में धूमधाम से मनाया गया। आकाशवाणी जोधपुर के लिए संजय व्यास के साथ मैं नैमिता।
1: शिक्षा नगरी कोटा की महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ध्वजारोहण किया। आइए अब आपको सुनवाते हैं कोटा केंद्र की ये खास रिपोर्ट।
8: आजादी के पावन समारोह का आयोजन हुआ कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में। स्टेडियम के साथ बने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पण किया गया। मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमान मदन दिलावर का आगमन हुआ और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान हुआ। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ आरंभ हुआ स्वतंत्रता दिवस का ये पावन समारोह। परेड निरीक्षण का आमंत्रण दिया गया। फिर हुआ मार्च पास्ट।
6: निकट लाए, चल, पेड़, बगल, सस।
8: महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन

0: ज्ञापन किया अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्री विनोद मल्होत्रा ने।
1: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको 80वें स्वाधीनता दिवस की असीम शुभकामनाएं।
0: राज्यपाल महोदय के संदेश के पठन के बाद माननीय पंचायती राज एवं शिक्षा विभाग मंत्री मदन दिलावर जी ने अपना उद्बोधन दिया।
2: हम सब लोगों को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो दायित्व हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, सबको ध्यान में रखते हुए आगे काम करना होगा।
0: माननीय मंत्री श्री मदन दिलावर ने अपने उद्बोधन के बाद देश पर कुर्बान हुए शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया, उनके स्थान पर गए और उनके चरण छूकर उन्हें शॉल और श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया।
3: शहीद भारत भूषण पारोलिया और साथ ही श्रीमती शांता जी का भी श्रीफल शॉल ओढ़ाकर
4: उन शहीद कोटा के हेमराजी मीणा जिनको हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते।
0: फिर बारी आई अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के पुरस्कार प्राप्त करने की। माननीय मुख्य अतिथि महोदय आईजी हरेंद्र महावर और जिला कलेक्टर पीयूष समारिया द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम से लौटते हर कदम के साथ लोगों के दिलों में एक संकल्प भी था कि देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों के जज्बे को वे अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। इस रेडियो रिपोर्ट के लिए तकनीकी सहयोग सुनील कुमार सुवालका ने दिया, संयोजन हिमांशु नामा का, निर्देशन तेजराम मीणा का और राजेश महावर अब चाहता है अनुमति। नमस्कार।
5: राजधानी जयपुर की चौगान स्टेडियम में हुए जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोग पूरे जोश और जज्बे के साथ शिरकत करते नजर आए। उद्योग और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राष्ट्रध्वज फहराकर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के संघर्ष से लेकर आज की सशक्त और आत्मनिर्भर भारत तक की यात्रा देश के हर नागरिक की मेहनत, संकल्प और सहभागिता की कहानी है। सभी का योगदान भारत की ताकत है। चूरू में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में कई रंगारंग और आकर्षक प्रस्तुतियां हुई।
6: चूरू जिले में आज 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पश्चात मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर चूरू अभिषेक सुराणा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। मुख्य अतिथि के परेड निरीक्षण के पश्चात परेड दल में शामिल राजस्थान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों ने सलामी मंच के आगे से मार्च पास्ट किया। तत्पश्चात स्कूली बच्चों की ओर से बैंड वादन की प्रस्तुति दी गई। वहीं शहर के अनेक शिक्षण संस्थानों के सैकड़ों बच्चों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू अर्पिता सोनी ने महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने अपने उद्बोधन में वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आजादी के इस पावन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।
7: हमारे सेनानियों के अदम्य साहस, देश प्रेम की उत्कट ज्वाला और जोश का ही परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत में स्वराज का उदय हुआ। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, नेताजी बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्ला का समस्त देश के उन सभी महान नेताओं, वीरों, सेनानियों और आज़ादी के योद्धाओं को नमन करता हूं। मैं आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि चूरू का स्वतंत्रता संघर्ष और देशभक्ति की गौरवशाली परंपरा से गहरा संबंध रहा है। मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे देश प्रेमियों ने आज़ादी से करीब 17 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रगान करते हुए चूरू के धर्म स्तूप पर तिरंगा फहराया था और अंग्रेजी शासन को खुली चुनौती दी थी।
6: समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर चूरू अभिषेक सुराणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह

0: बार हल किया।
1: झालावाड़ में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने राष्ट्र ध्वज फहराया।
2: सावन की हरियाली में लहराते तिरंगे के साथ हर कोई स्थानीय श्रीमती विजयाराजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में 80वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक शामिल होने के लिए बेताब था।
3: जश्न आजादी के उल्लास भरे माहौल में प्रातः ठीक 8:58 पर मुख्य अतिथि महोदय जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ का आगमन हुआ।
2: ठीक 9 मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के ध्वज फहराने और राष्ट्र ध्वज की सलामी के साथ मुख्य कार्यक्रम आरंभ हुआ।
3: परेड कमांडर आरआई झालावाड़ श्री विष्णु सिंह की कमान में राजस्थान पुलिस महिला एवं पुरुष होमगार्ड राइफल और एनसीसी स्काउट गाइड सदस्यों सहित परेड में शामिल सभी पलटूनों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।
2: मार्च पास्ट के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय श्री कमल सिंह यादव ने मंच से महामहिम राज्यपाल महोदय श्री हरिभाव वागड़े के संदेश का पठन किया।
4: आप लोग आज पूरा देश सम्मान और गौरव के साथ राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। मैं देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले
5: बीते समय में प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई। इनमें सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान प्रदेश अग्रणी बन गया है। हमें इस उपलब्धि पर गर्व है।
3: स्वाधीनता दिवस के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में पीटीएस के जवानों ने बेहद आकर्षक फायरिंग डेमो प्रस्तुत किया। इस फायरिंग डेमो में जवानों ने दर्शा दिया कि किस प्रकार से वह जल थल नभ और चारों दिशाओं में देश के दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया कर सकते हैं।
2: तत्पश्चात स्काउट और गाइड ने सामूहिक भारतीय व्यायाम प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया।
3: और अंत में राष्ट्रगान के साथ झालावाड़ के श्रीमती विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल झालावाड़ में स्वाधीनता दिवस का यह मुख्य समारोह सम्पन्न हुआ।
2: स्थानीय खेल संकुल झालावाड़ में आयोजित 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है।
3: तकनीकी सहयोग ब्रजेश कुमार मीणा और नवीन कुमार लोधा का,
2: संयोजन और प्रस्तुति विमल शास्त्री की,
3: संकलन और वाचन मोहम्मद साजिद और लोकेश व्यास का।
1: सवाईमाधोपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ध्वजारोहण किया। पुलिस परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया, जहां सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। चित्तौड़गढ़ केंद्र की ये रिपोर्ट।
6: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह चित्तौड़गढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले का मुख्य समारोह चित्तौड़गढ़ के स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि रहे सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार दत्त। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। तत्पश्चात माननीय मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण कर स्वाधीनता दिवस समारोह 2026 की विधिवत शुरुआत की। स्टेडियम में उपस्थित समस्त जन समूह ने राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी। परेड कमांडर आरआई अनिल कुमार पांडे के आमंत्रण पर माननीय मुख्य अतिथि श्री गौतम कुमार दत्त ने परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर अनिल पांडे के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस होम गार्ड एवं अन्य स्कूलों की टोलियां मार्च पास्ट करते हुए मंच से गुजरी। तालियों से मार्च पास्ट का स्वागत किया गया। इसके बाद माननीय राज्यपाल श्री

0: हरिभाऊ किशन राव बागड़ी का राज्य की जनता के नाम संदेश का वाचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ दिनेश धाकड़ द्वारा किया गया।
1: मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, आपको 80वें स्वाधीनता दिवस की असीम शुभकामनाएं। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारंभ हो चुका है। इससे पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों को प्रमुख बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर इससे प्रदान होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में सैकड़ों सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भी हमारे अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं।
0: इसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि सहकारिता विभाग राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री गौतम कुमार दक ने स्वाधीनता समारोह में अपना उद्बोधन दिया।
2: भारत माता की। मैं इस अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस 2.5 साल के छोटे से टेन्योर में जिस प्रकार से राजस्थान के विकास को नए आयाम दिए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अनेक जो योजनाएं राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण थी, चाहे से वो ERCP योजना हो, चाहे से यमुना जल समझौता हो, उनको धरातल पे लाने का काम किया है। हमारे इस क्षेत्र के लिए जो माही से और जाखम से हमारे इस क्षेत्र में जो पेयजल की कमी है, चंबल से हमारे इस क्षेत्र को पानी मिले पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उसके लिए भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं।
0: सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत श्री भुवन भानु सुरेश्वर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ की छात्राओं द्वारा देशभक्ति सामूहिक नृत्य एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर चित्तौड़गढ़ की छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से देशभक्ति से ओत प्रोत नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी गयी। राष्ट्र गीत वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह 2026 का समापन हुआ। आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की OB टीम के साथ मैं वर्षा अग्रवाल।
3: इसके अलावा 80वें स्वतंत्रता दिवस को अन्य जिलों में भी समारोह पूर्वक मनाया गया। कई जिलों में मंत्रियों ने तो कहीं जिला कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। आइए हम सभी स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि देश की एकता और अखंडता को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। इसी गर्व के साथ आप सभी को एक बार फिर स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आलेख डॉक्टर सालेहा गाजी, वाचन स्वर रितिका गुप्ता, संपादक हेमलता बालवानी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों पर आधारित विशेष समाचार तरंग। इसमें आलेख था डॉक्टर सालेहा गाजी का, वाचन स्वर रितिका गुप्ता, संपादन हेमलता बालवाणी का और प्रस्तुतकर्ता थे रामनाथ मीणा। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉयड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in।

0: अब आप जहाँ भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं जयपुर अजमेर का आमिर चैनल। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा स्पोर्ट स्कैन कार्यक्रम, उसके बाद समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9 और उर्दू में समाचार। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं अतहर सईद आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में भी हम लेकर आए हैं खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग, यानी खेल जगत की बड़ी खबरें आपके लिए। आज 15 अगस्त है, यानी आज हमारा राष्ट्र मना रहा है 80वां स्वाधीनता दिवस। तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले एक नज़र आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी की प्रतिबद्धता दोहराई। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। श्रीलंका के साथ दो मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने शतरंज के सिंक फील्ड कप के 5वें दौर में अमेरिका की वेस्ली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली। भारत आज अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में खेल, खिलाड़ियों की संभावनाओं, खेल के लिए सरकार की भविष्य की योजना और ओलंपिक 2036 की मेजबानी की दावेदारी करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल के पोडियम पर भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, तिरंगा लहराता दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, खेल संरचनाएं, खेल के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए पोषण के क्षेत्र में भारत महारत हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है, भारत के पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा कि हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम जिन खेलों में क्वालिफाई नहीं कर पाते उन पर ध्यान दें। हम इस

0: प्रतिभा खोज अभियान चलाना चाहते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल 5 से 15 साल के बच्चों में प्रतिभा ढूंढने के लिए प्रतिभा खोज अभियान चलाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रतिभा की पहचान की जाएगी और फिर बच्चों को प्रशिक्षण देकर उन्हें देश के श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात हॉकी की। नेदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। मैच के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ हैं हमारी सहयोगी करिश्मा राय।
2: 5 दशक के बाद विश्व कप में पदक जीतने के इरादे से उतरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की मदद से अपने अभियान की अच्छी शुरुआत की। अपना दूसरा ही विश्व कप खेल रही वेल्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले 5 मिनट में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। दूसरे ही मिनट में वेल्स ने भारतीय सर्कल में प्रवेश किया जब फ्रेड न्यूबोल्ड के पास जैक प्रिचार्ड का शॉट गोलकीपर सूरज करकेरा ने बचा लिया। बाद में भारत ने जवाबी हमला शुरू किया और हार्दिक सिंह ने 7वें मिनट में टीम को पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलाया। दूसरे पेनल्टी कॉर्नर को संजय राणा ने गोल में परिवर्तित भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। भारत को 11वें मिनट में तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर कप्तान हरमनप्रीत ने कोई चूक न करते हुए भारत को 2-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में दोनों ही टीमों को कोई सफलता नहीं मिली। हाफ टाइम तक भारत के पास 2 गोल की बढ़त बरकरार थी। मैच के 42वें मिनट में हरमनप्रीत ने बाईं ओर दमदार शॉट पर अपना दूसरा गोल दागते हुए भारत की बढ़त को 3-0 पर पहुंचा दिया। आखिरी मिनट में वेल्स ने अंतर कम करने की भरसक कोशिश की और 56वें मिनट में सेम वेल्स ने अपनी टीम के लिए एकमात्र गोल किया। हरमनप्रीत को बेहतरीन प्रदर्शन के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विशेष। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप में ये कहा जा सकता है कि आगाज तो अच्छा है और जब शुरुआत अच्छी हो, धमाकेदार हो, शानदार हो तो उम्मीद तो बेहतर की जा सकती है।
3: जी बिल्कुल अतर, शुरुआत बेहद शानदार रही है। कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो थे उन्होंने फ्रंट से आज लीड किया और बहुत ही अच्छा उदाहरण जो है दिखाया है सभी खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने अहम मौकों पर गोल किए। इसके साथ ही अन्य खिलाड़ियों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, चाहे वो संजय राणा हो या गोलकीपर सूरज करकेरा हो, हार्दिक सिंह, जर्मनप्रीत सिंह। टीम एफर्ट के साथ साथ ये जीत हमको देखने को मिली है। भारत को अपना अगला मुकाबला 17 तारीख को इंग्लैंड से और 19 को पाकिस्तान से खेलना है, तो इसी लय को बरकरार रखते हुए जीत की कामना करेंगे।
1: बिल्कुल, जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए हमारी शुभकामनाएं भारतीय हॉकी टीम के साथ हैं। और बात क्रिकेट की। गॉल में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक आज भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पड्डीकल 131 रन और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। इस मैच के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गोस्वामी।
4: भारतीय क्रिकेट इतिहास के 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने 47 रन की साझेदारी की। जायसवाल 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद केएल राहुल ने देवदत्त पड्डीकल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तीसरे सत्र की शुरुआत में केएल राहुल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण खेल जारी नहीं रख सके और 162 गेंदों में 77 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। कप्तान शुभमन गिल 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बारिश के कारण खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। खेल दोबारा शुरू हुआ। देवदत्त पड्डीकल ने ऋषभ पंत के साथ 67 गेंदों में 52 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम इंडिया को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। पड्डीकल 178 गेंदों में 131 रन बनाकर नाबाद हैं। उनकी पारी में 1 छक्का और 12 चौके शामिल हैं। पड्डीकल का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह पहला शतक है, जबकि पंत ने 36 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों के साथ 27 रन जोड़ लिए हैं। श्रीलंका की तरफ से एकमात्र सफलता प्रभात जयसूर्या ने हासिल की। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष आज पड्डीकल की अगर बात करें तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। आज की नाबाद

0: कड़ी में उन्होंने कई नए कीर्तिमान भी बनाए।
1: जी अतर, और आज की देवदत्त पड़िक्कल की पारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आई है और ऐसा करने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन पाए हैं। इसके अलावा इनसे पहले विराट कोहली ने ओडीआई सेंचुरी मारी है 2019 में, और विराट कोहली ने गणतंत्र दिवस पर 2012 में शतक जमाया था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर टेस्ट क्रिकेट में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पहला शतक है भारत
0: की। तरह से सलामी है ये तिरंगे।
1: जी जी बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ वो 2024 के बाद पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 3रे नंबर पर भारत के लिए टेस्ट में शतक लगाया है। 19 टेस्ट मैच में 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद भी भारत को अपना शतकवीर नहीं मिला था, देवदत्त पड़िक्कल ने वो करके दिखाया।
0: बिल्कुल,
1: इससे पहले ये रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम था जो उन्होंने 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ ये शतक लगाया था।
0: अच्छा, भारत की ओर से आज ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल रिटायर्ड हर्ट हुए, अन्यथा शायद भारत का स्कोर और बेहतर होने की संभावना थी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि केएल राहुल जो है बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 162 गेंदों पर 77 रन की पारी खेली और 9 चौके और 1 छक्का लगाया। उनको एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी के चलते बहुत सारे क्रैम्प से जूझना पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने अपना खेल आगे ना जारी रखने का निर्णय लिया।
0: बिल्कुल, आपने चर्चा की विशेष कि देवदत्त पड़िक्कल ने आज ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया, उन्होंने शतक बनाया आज के इस मैच में। 15 अगस्त के दिन उन्होंने शतक बनाया, शतकवीर कहलाए। लेकिन विशेष इसके अतिरिक्त भी ये मैच एक ऐतिहासिक मैच है क्योंकि ये भारत का 600वां टेस्ट मैच है और भारत का अब तक का सफ़र कैसे रहा ये चर्चा मैं आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ।
1: अतर, 1932 में शुरू हुई ये टेस्ट क्रिकेट की जर्नी भारत के लिए अब बहुत ही अच्छे पड़ाव पर पहुंच चुकी है क्योंकि शुरुआती 100 टेस्ट मुकाबलों में भारत ने सिर्फ 10 में से जीत दर्ज करी थी, लेकिन हम अगर अपने आखिरी के 100 टेस्ट मुकाबलों की बात करें तो उसमें से 56 में से हमने जीत दर्ज करी। कुल मिलाकर बात यह है कि 600 मुकाबलों में 186 मुकाबले जीते हैं, 188 हारे हैं और 224 मुकाबले ड्रॉ खेले हैं।
0: बिल्कुल, उधर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें तो बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। टेस्ट के 3रे दिन का खेल समाप्त होने तक आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 161 रन बनाए। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर बांग्लादेश द्वारा ली गई 228 रनों के विशाल बढ़त से 67 रन पीछे है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। जैक वेदराल्ड को हसन महमूद ने बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। इसके बाद ट्रेविस हेड भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 35 गेंदों में 17 रन बनाने के बाद आउट हुए। मार्नस लाबुशेन ने आगाज तो अच्छा किया लेकिन वे अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके और 31 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेलने वाले स्टीव स्मिथ 88 गेंदों का सामना करने के बाद 44 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन का खेल खत्म होने तक कैमरून ग्रीन 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और उनका साथ एलेक्स कैरी 19 रन बनाकर दे रहे हैं। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले हसन महमूद दूसरी इनिंग में अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑल आउट हुई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 198 रन बनाकर सिमटी थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: विशेष यदि हम बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच की चर्चा करें तो बांग्लादेश इस समय एक सुरक्षित स्थिति में कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल अतर, क्योंकि आज 3रे दिन का खेल समाप्त हुआ है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी भी 67 रन से पीछे है और अगर कल मुकाबला खेला जाएगा तो 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है जो कि बांग्लादेश आसानी से लेने की कोशिश करेगा और आखिरी दिन अगर ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा स्कोर भी बनाती है तो बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी उसको चेस करने के लिए। तो ये मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसमें कई सारे कीर्तिमान भी बने विशेष।
1: जी बिल्कुल, अगर हम एक कीर्तिमान की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने एक नॉन विकेट कीपर होते हुए जो रूट के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। उन्होंने 218 जो कैचेस का रिकॉर्ड था वो अपने नाम कर लिया है क्योंकि उन्होंने जो रूट से कम टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इसके साथ ही साथ जोश हेजलवुड 9वें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 300 विकेट का आंकड़ा छू लिया है।
0: और अब शतरंज, सेंट लुई में खेली जा रही ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंक फील्ड कप के 5वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के वैसली सो के साथ बाजी ड्रॉ खेली है। प्रज्ञानंदा ने काले मोहरों से खेलती हुई बाजी ड्रॉ कराई। 10 खिलाड़ियों के बीच खेली जा रही इस प्रतियोगिता में उनके 5 मैच में अब 3 अंक हो गए हैं और वो संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वैसली ने 3.5 अंकों के साथ बढ़त बना रखी है। इस बीच अमेरिका के फैबियानो कारुआना और

कंपनी के विंसेंट कीमर ने सफेद मोहरों के साथ सबसे महत्वपूर्ण समय पर जीत हासिल की। कारुआना ने पांचवें दौर में आर्मेनियाई मूल के अमरीकी खिलाड़ी लेवोन ओरोनियन को जबकि विंसेंट ने खराब फॉर्म में चल रहे अनीश गिरी को हराया। इस तरह से अब प्रज्ञानंदा कीमर कारुआना और मैक्सिम वचियर लग्रेव तीन तीन अंक लेकर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की सानिया वत्स आज पीएसए चैलेंजर टूर्नामेंट वेंडिगो ओपन स्क्वाश के महिला सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रेचल ग्रीनहम से पांच में गेम के रोमांचक मुकाबले में हार गई। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी सानिया को ग्रीनहम से 6-11, 11-8, 9-11, 11-8, 7-11 से हार का सामना करना पड़ा। सानिया ने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की सातवीं वरीयता प्राप्त जो टेनर को 11-3, 11-1, 11-2 से हराया। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। कल इसी समय स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर होगी मुलाकात। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अतहर सईद को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण

0: देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी।
3: उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच

0: मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवेन अजार, अर्जेंटीना राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को

0: इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्षा विलियम्स with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, "A nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve." The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
2: Energy security ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य स्तर लाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said the government has opened

0: a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम-ए-आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत की और लोगों पर जोर दिया कि वो एक मजबूत और खुदकफील भारत के लिए बड़े ख्वाब देखें। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर दिया और भारत को नई बुलंदियों पर ले जाने की खातिर नौजवानों की क़ुव्वत को बरूए-कार लाने के मकसद से सप्तधारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम-ए-आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। आज 80वां यौम-ए-आज़ादी पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौम-ए-आज़ादी की तकरीबात में मुल्क की क़यादत की। वहां उनके पहुंचने के बाद लाल किले पर पहली मर्तबा कौमी गीत वंदे मातरम गाया गया। इस साल की तकरीबात में 2047 तक विकसित भारत की तामीर में नौजवानों के रोल को तस्लीम करते हुए युवा शक्ति की अहमियत उजागर की गई। लाल किले की फसील से कौन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन कोशिशों की बदौलत 25 करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आ गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक एक तरक्याफ्ता मुल्क बनने का बड़ा निशाना तय किया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत, जो कभी 5 कमजोर मईशतों वाले मुल्कों में शामिल था, अब दुनिया में एक बड़ी और सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली मईशत के तौर पर उभरा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोई मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब वो खुद अपने ख्वाब और अज़्म की ताकत के साथ कदम बढ़ाता है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि बड़े ख्वाबों और मजबूत अज़्म से मुल्क की कोशिशों की सलाहियत में इजाफा होता है।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी मौजूदा

0: रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने साहिल समंदर के 99% इलाके खोल दिए हैं और सरकार अब समंदर की गहराइयों में तलाश का काम सरगर्मी के साथ अंजाम दे रही है और नए जखायर दरियाफ्त करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।
0: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
1: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने पर जोर देते हुए जना मोदी ने मुख्तलिफ पब्लिक इम्तिहानात के लिए गरीब और मुतवस्सित तबके के कुनबों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया। वजीर आजम ने यह ऐलान भी किया कि सरकार ने यह फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI की हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। जना मोदी ने कहा कि इस तरह ये नौजवान आलमी सतह पर AI के शोबों में सरकर्दा रोल अदा कर सकेंगे।
0: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: अपने खिताब में वजीर आजम ने मुल्क के लोगों पर जोर दिया कि वो कुव्वत की 7 धाराओं सप्त धारा को बरूए कार लाएं। जना मोदी ने कहा कि अगले 5-7 साल में मुल्क वो सब कुछ हासिल कर लेगा जो गुजश्ता 5-7 दहाइयों में भी हासिल नहीं किया जा सका था।
0: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: वजीर आजम ने कहा कि अगले 7-8 साल में मजीद 5 से लेकर 8 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। जना मोदी ने कहा कि 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है।
0: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: पेश है लाल किले पर यौम आजादी की तकरीबात के सिलसिले में हमारे नामा निगार की यह रिपोर्ट।
2: आज यौम आजादी की तकरीबात के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाया गया। पहली मर्तबा लाल किले पर इन तकरीबात के दौरान वंदे मातरम गाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ और महकमे दिफा के सेक्रेटरी राजेश सिंह ने लाल किले पहुंचने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को पेश किए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दस्ते में एक अफसर और फौज, बहरिया, फजाइया और दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखने वाले 24 अहलकार शामिल थे। वजीर आजम ने कौमी परचम लहराया और इसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। तकरीब के मकाम पर भारतीय फजाइया के MI-17 तर्ज के 2 हेलीकॉप्टरों के जरिए फूल बरसाए गए। फौज के बैंड ने वंदे मातरम की धुन बजाई और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने कौमी गीत गाया। इसके बाद कौमी तराना पेश किया गया। इस साल लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीब के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5,000 खसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया था। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आलमी रहनुमाओं और गैर मुल्की मिशनों ने भारत के 80वें यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरासत और इलाकाई नीज आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम कलीदी साझेदारी को उजागर किया, जबकि सिंगापुर के सदर थर्मन शनमुगारत्नम ने हुनरमंदी के फरोग, डिजिटल शक्ल दिए जाने, पायदार निजाम और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बढ़ते हुए ताउन की अहमियत उजागर की। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने भी 80वें यौम आजादी पर भारत के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसराइल के सदर आइजक

0: गाड़ियों पर ले जाने के खातिर नौजवानों की कुव्वत को बरूए कार लाने के मकसद से सप्त धारा फ्रेमवर्क का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट की एटमी बिजली की सलाहियत के निशाने का ऐलान किया। आलमी रहनुमाओं ने भारत के यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद दी और उसके जमहूरी सफर, तहजीबी विरसे और इलाकाई और आलमी इश्तराक में उसके बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इंडोनेशिया में शदीद जलजले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश, गंगा की तराई वाले मकबी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रखने की पेशगोई की गई है। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संकेत का।

भावना को आवाज देने की बात आती है तो कुछ ऐसे गीत हैं जो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं और इसी फहरिस्त में है पूरब और पश्चिम फिल्म से गीत जो आप तक पहुंच रहा है महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

ये गीत था फिल्म राजनीति से और इस गीत को गाया है विजय प्रकाश ने। और अब अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है फिल्म लव आजकल से। आवाजें दी हैं इसमें मास्टर सलीम और श्रीधर ने।

और ये गाना था फिल्म तुम्हारी सुलों से, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। और अब जो आप अगला गाना सुनेंगे वो है आधा इश्क, और इसे गाया है श्रेया घोषाल ने। फिल्म है बैंड बाजा और बारात।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। श्रोताओं, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती स्थगित हो गया है, तो अब फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुनिए। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत है कर्म फिल्म से। इस गीत में आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ और साथियों की। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत प्रस्तुत है पूरब और पश्चिम फिल्म से। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की, बोल इंदेवर के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: करता हूँ।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रस्तुत है नया दौर फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की, बोल है साहिर के और संगीत ओपी नैयर का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।
1: आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री जुनैन खान का सितार वादन। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे जुनैन खान का बचपन मुंबई में बीता। मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता सुप्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार की शिक्षा प्रारंभ की। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने अपने अभिनव जाफर खानी बास के माध्यम से सितार की रचना, वादन शैली, तकनीक और इस वाद्य की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान की। जाफर खानी बास को लयात्मक नवाचार और स्वर की गहराई पर आधारित सितार वादन की एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत परंपरा के रूप में जाना जाता है। इस शैली के तकनीक के बारे में श्री जुनैन खान बताते हैं कि इसमें एक साथ दो और कभी कभी तीन तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाएं हाथ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों हाथों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है। श्री जुनैन खान हलीम अकादमी ऑफ सितार के कार्यकारी निदेशक हैं। यह भारत की पहली सितार अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में उनके पिता उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने की थी। श्री जुनैन खान जाफर खानी शैली में भारत तथा विदेशों के विद्यार्थियों को सितार की शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत समारोहों का आयोजन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। श्री जुनैन खान ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह और मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। तानसेन समारोह ग्वालियर, संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित मारवाड़ समारोह जिसे पूर्व में मंड समारोह के नाम से जाना जाता था, सामापा संगीत सम्मेलन नई दिल्ली, पंडित नंदकिशोर शर्मा स्मृति समारोह भोपाल, विश्व संगीत दिवस 2025 मैसूर, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह नई दिल्ली प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी है। फ्रांस के नांत में आयोजित फेस्टिवल द एते, इंटरनेशनल रोंडाला फ्लैट स्ट्रिंग फेस्टिवल फिलीपींस, जोंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडिया कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बसंत बहार में अपनी प्रस्तुतियां दी है। श्री जुनैन खान चीन के बीजिंग में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के आधिकारिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। वर्ष 2018 में सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा सामापा संगीत तेजस्वी सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात NCPA के सहयोग से गान वर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा एस्टेब्लिश आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री जुनैन खान का सितार वादन। आज की प्रस्तुति का आरंभ वे करेंगे राग रागेश्री से। विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है और द्रुत गत भी 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश प्रधान।
2: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। Tonight we present sitar recital by renowned sitarist Shri Zunain Khan. Born in Bhopal, Madhya Pradesh, Zunain Khan grew up in Mumbai. He began playing sitar at the age of 5 under the tutelage of his father, Ustad Abdul Halim.

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Rageshri by Shri Zunain Khan. He continues his sitar recital with Raag Kirwani, Drutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग केरवानी। आज के संगीत कार्यक्रम का समापन श्री जुनैन खान राग देश में धुन से कर रहे हैं। दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू कीरवानी। ही कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद धुन इन राग देश सेट टू ताल दादरा।

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दैट वॉज धुन इन राग देश एंड दैट कंक्लूड्स द सितार रिसाइटल बाय श्री जुनैन खान। In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। इस समय रात के 11 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार। ये समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय

0: और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। इस समय रात के 11:05 हुए हैं और हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 5:53 पर। शुभ रात्रि, जय हिंद।